जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा।

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva burka. Mirchi, burka.
2: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
3: जी बोल रहा हूँ।
2: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
3: कहाँ ना सर?
2: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
3: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
2: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
3: मैं दे दूंगा।
2: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
3: 4 यूनिट?
2: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
3: क्या चढ़ाना है?
2: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
3: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना?
2: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
3: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब चढ़ाऊं?
2: आपका ग्रुप मिल गया
3: सर? इसका हीरोइन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: हीरोइन का भी कुछ होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
3: जी, जी
2: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
3: अच्छा,
2: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
3: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
2: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
3: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
2: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
3: जी
2: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
3: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah.

0: अजी चुप थोड़े हैं हम, आपने इतने अच्छे से पुकार लिया तो हम आ ही गए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। यस, इट इज अ ब्यूटीफुल डे। हालांकि आप कहोगे कि यार मंडे को आफरीन ब्यूटीफुल कह रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन यार जो आपके दिमाग में चलते रहता है, जिस तरह से आप जिस चीज को परसीव कर लेते हैं वो वैसी हो ही जाती है। तो बस इस खूबसूरत सुबह में मैं यही कहना चाहूंगी ना कि भाई पॉजिटिव नोट पर अगर आप दिन शुरुआत की करोगे तो दिन अच्छा ही जाएगा। तो बस यही करने की कोशिश कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ आप सभी के लिए कि आपका दिन ना बहुत ही बेहतरीन गुजरे, भले चाहे हमारा मौसम जो है हमारा साथ ना दे।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल वेदर आज कहता है 44 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम, मिनिमम 34 पर है, और अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो राइट नाउ ये 66% है, कल की तरह ही है लगभग। हाँ ड्यूरिंग द डे थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, हवाएं तो यार बिल्कुल हवाएं नई के बराबर ही चल रही हैं आजकल। लेकिन कल का अगर आपने मौसम देखा होगा कि इतना ऐसा लग रहा था कि कल बस बारिश हो ही जाएगी। अरे कल तो पूरे क्लाउड से आसमान घिरा हुआ था, लेकिन नहीं, अगर कहीं पर बारिश हुई है और आपने एक्सपीरियंस की है तो प्लीज बताइएगा मुझे जरूर। 5000 1896 इज माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर इमरान का मैसेज आया है, दैट वेकी साउंड क्वीन, क्या बात है। गुड मॉर्निंग टू द वॉइस दैट मेक्स एवरी लिसनर स्माइल बिफोर देयर फर्स्ट कप ऑफ कॉफी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपार्ट फ्रॉम दैट हरपाल संधू दुखान से भी हमें गुड मॉर्निंग कहते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव समवन सेइंग गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्लेस्ड डे। और ये कौन है, मोहम्मद खालिद है इनका नाम। सो वेल, सभी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं और आपकी मॉर्निंग को और बेहतर बनाते हैं विद माय फेवरेट ट्रैक, क्यों ना नीति मोहन की आवाज, माइक से दिल तक आफरीन का साथ और मिर्ची इट्स हॉट।
3: मेरी

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah live.

गाने जो आप वॉकमैन पे सुना करते थे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। 10th ऑफ अगस्त मंडे का दिन है और ऐसा नहीं लग रहा आपको कि हमारे कतर में जो इतने महीने नहीं कह सकती हूँ, डेढ़ महीने से तकरीबन है ना, थोड़ी सी ऐसी शांति सी छाई हुई थी। लोग कतर से चले गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, वो कहीं ना कहीं लौट आ गए हैं। क्या आप भी उनमें से एक हो? और अगर नहीं हो तो आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, अब थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ रहा है। यस, इफ यू फील सो लेट मी नो 5000196 के हाँ, फिर ऐसा लग रहा है अब स्पेशली कल का दिन, बिकॉज इट वॉज अ न्यू वीक, तो बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां खत्म करके फिर से रिज्यूम कर चुके हैं। लेकिन लेट मी टेल यू बॉस, अभी तक फुल फ्लेज्ड स्कूल्स वगैरह तो शुरू हुई नहीं है, तो गाड़ियां अभी तक रास्ते पर सुबह में आई नहीं है। मीनवाइल हैविंग सेड दैट, बहुत सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस फिर से आ गए हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, होप ऑल इज वेल, दैट इज आलीशान। फिर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्लेस्ड डे। इनका नाम क्या है जी? नाम नहीं लिखते हो ना आप तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं कैसे गेस कर पाऊंगी, है ना? So with this, 5000196 मेरा WhatsApp नंबर है। बस उम्मीद यही करती हूँ कि खूबसूरत जाए आपका दिन और ये गाने के साथ शायद और भी बेहतर हो जाए। खेके की आवाज will instantly uplift your mood for sure, yeah. How can it not? Enjoy this track.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
3: मैं करूँ?
4: आप करोगे?
3: नहीं, मैं करवाता हूँ। मतलब मेरा होता है
4: सर, वो तो पता है। मेरा बस चलता है एक एक को घुसण मार के आती हूँ।
3: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड।
2: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: हॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live in

0: देखिए हमारी छोरी क्या छोरों से कम है क्या? और ये बात ना किसी ने बिल्कुल सही प्रूव कर दिया। वेल, क्या आपको पता है दैट दुनिया में सिर्फ 14 माउंटेन्स ऐसे हैं जो 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं, और कतर की एक वुमन ने उनमें से 11 कॉन्कर कर लिए हैं। यस, यू हर्ड राइट। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड
1: क्या खबर कतर?
0: देखिए खबर ऐसी है दैट कतरी माउंटेनियर शेखा असमा बिन थानी अल थानी हैज नाउ सक्सेसफुली सबमिटेड 11 ऑफ द वर्ल्ड्स 14 8000ers. Her latest achievement is Gasherbrum 2 in the Karakoram range on the Pakistan-China border. अब इसका scale समझाती हूँ मैं आपको। Gasherbrum 2 itself ये 8000 meter से ज़्यादा है, और एक बार ये जो climbers है, they cross 8000 meter ना, तो दे एंटर द डेथ जोन। अब डेथ जोन क्या होता है? जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जहाँ बहुत ठंड होती है, एग्जॉशन होता है, वेदर जो है रहता है वो साथ नहीं देता है, वो हर मुश्किलें ना बिल्कुल एम्पलीफाई होती है। एंड ऐसे में इतनी बड़ी फीट कंप्लीट करना, दैट इट्सेल्फ इज वेरी कमेंडेबल। एंड हियर्स अनदर इनक्रेडिबल बिट ऑफ शेखा असमा, वो ये है कि वो फर्स्ट कतरी वुमन टू समिट माउंट एवरेस्ट इन 2022, ये भी उन्होंने किया है। एंड बाय 2024 शी हैड आल्सो बिकम द फर्स्ट अरब वुमन एंड फर्स्ट कतरी टू कंप्लीट द एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम विच कंबाइंस द 7 समिट्स विथ रीचिंग द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। तो ये जो है, इट्स नॉट जस्ट अनदर समिट जो उन्होंने बिल्कुल हासिल किया है, 11 हो चुके हैं, 3 और बाकी है। शेखा असमा, कतर इज इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ यू। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताऊँ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूँ।
1: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।
2: What?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, इंतजार लंबा नहीं है वैसे। उन लोगों के लिए जो इमरान हाशमी की मूवी का इतने साल से इंतजार कर रहे थे, एंड फाइनली आवारापन 2 जो है वो यही वीक रिलीज़ होने वाली है। इफ़ आई एम राइट, थर्सडे को जनरली हमारे कतर में मूवीज़ रिलीज़ हो जाती है, हालांकि इंडिया में फ्राइडे को होती है। तो अगर इसकी तारीख मैं बताऊँ आपको, ये जो रिलीज़ होने वाली है ये अगर इंडिया में फ्राइडे को रिलीज़ होगी ये वाले 14th of August, तो हमारे यहाँ पर 13th को हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से वीकेंड का प्लान आपका ऑलरेडी सेट हो जाएगा फॉर ऑल द इमरान हाशमी फैंस आउट देयर। लेकिन लेट्स टॉक About all the Suhani Shah fans. अरे वो लोग जो बिल्कुल क्रेजी है कि यार ये मेंटलिस्ट कैसे, एक्चुअली यार ये कैसे माइंड रीड कर लेते हैं, देन यू रियली हैव टू विटनेस दिस लाइव। Suhani Shah, इंडिया की नंबर वन मेंटलिस्ट जो है वो कतर आ रही है, एंड येस 25th of September इज द डेट, QNCC इज द प्लेस, और एस सिटी या सोनो सिटी से आप अपनी टिकट्स खरीद सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, फिलहाल ना आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, और ये जो है मैंने कहा था आपको लास्ट वीक कि ये बस कुछ दिनों का है, तो कुछ 10 से 15 दिन है इफ आई एम राइट, और अब और ये लास्ट वीक ही रहेगा कि ये डिस्काउंट्स वुड बी एप्लीकेबल। उसके बाद में आपको रेगुलर प्राइजेस पर टिकट्स मिलेगी, तो फटाफट से अभी अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए। और ये एक ऐसा शो है जो आप अपने बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ, या फिर पूरे फ्रेंड्स के गैंग के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सो 25th of September, mark your dates, save it and book your tickets for Suhani Shah live in Qatar. मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 7:05 की तरफ, और सचिन टंडन की आवाज में अगला गाना आपके लिए ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: हेलो
2: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या मत तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे।
1: क्या हो गया
2: सर, मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है। मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया है, क्या कर दिया आपने।
1: क्या हुआ क्या है
2: सर, एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने।
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम क्या है।
2: चंद्र फोन लेके आ।
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार।
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख। ये क्या यार ये।
1: अरे आपने लिया कहाँ से था।
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप।
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप।
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: थोड़ी ना
2: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे,
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई।
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है, आप फालतू हैं।
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू को।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट। आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट।
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये,
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

जैस्मिन सैंडलेस और सचिन जिगर की आवाज में दैट वाज तरस. और जानते हो इसमें कौन सी एक्ट्रेस थी? इट वाज शर्वरी. अब आप सोच रहे हो कौन शर्वरी? भाई ये वो ही शर्वरी है जो मुंजिया मूवी में आई थी. नहीं याद है? बंटी और बबली 2 में याद आई थी. नहीं याद है? महाराज मूवी में आई थी आमिर खान के बेटे के साथ, जुनैद खान के साथ में. हाँ, वहां पर भी इसने काफी अच्छी एक्टिंग की थी. और अगर ये सब भी याद नहीं है तो फिर मैं वापस आऊंगा जो अभी हाल ही में मूवी आई है दिलजीत दोसांझ के साथ, वेदांग रैना के साथ, नसीरुद्दीन शाह. व्हाट एन एक्टर यार. ये मूवी में भी ये नजर आई है. एंड लेट मी टेल यू व्हाट अ फिनोमिनल एक्ट्रेस शी इज. मतलब यार कुछ अच्छे कैरेक्टर्स या कोई अच्छी स्टोरी और कहीं जहाँ पर अच्छी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का अगर इन ऐसी एक्ट्रेस को मौका मिले ना तो आई थिंक सो शी विल डू रियली वेल. सो वेल, मैं वापस आऊंगा के बारे में मैं इसीलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि दिस मूवी इज नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स. अगर आपने नहीं देखी है यहाँ पर थिएटर्स पर, सो आई थिंक सो ये वीकेंड पर सुकून से बैठकर देखें क्योंकि ये ऐसी टाइप की मूवी है ना जहाँ आप 10 लोग के साथ बैठकर नहीं देख सकते हो. यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड साइलेंस. और ज्यादा ऐसे घिचविच में ये मूवी नहीं देखना. और अगर आप में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है ना तो फिर ये देखो ही मत. बट वन मूवी इम्तियाज अली की, मतलब इम्तियाज अली की मूवी कौन सी अच्छी नहीं होती मुझे बताओ. रॉक स्टार हो गई है, तमाशा, जब वी मेट, लैला मजनू, सो मैनी, एंड दिस इज अनदर जेम ऑफ इम्तियाज अली. तो बस एक इम्तियाज अली की फैन जो है वही कह रही है आपसे, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए. आप रीन है आपके साथ माइक से दिल तक राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और उसके तुरंत बाद आफरीन लेकर आ रही है आपका फेवरेट वाला गेम जिसे मैं कहती हूँ लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. यू गॉट अ स्टे ट्यून एंड प्ले विथ मी. तब तक के लिए अरिजीत सिंह की आवाज में हाय लापता लेडीज, अनदर ब्यूटिफुल मूवी ना. Enjoy this track on Mirchi It's Hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपर मार्केट ई रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.
7: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25 सितंबर एट QNCC।
8: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।
7: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव।

0: Hollywood, Bollywood, Bordai.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावबाजी।
3: शाबाश। डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11।
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: चोर करता है।
3: शाबाश। लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन।
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
4: पीके मेनन।
3: खादम।
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता। आदमी का नाम राजकुमार राव। रेडियो स्टेशन का मिर्ची। इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordai.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: वेल नुसरत साहब की आवाज में ये गाना कितना सोना गाते हैं नुसरत साहब, क्या बात है। मतलब अभी तक उनकी आवाज में जो वो खनक जब सुनते हैं ना हम, तो इट्स सो स्ट्रॉन्ग एंड आई थिंक सो ऐसे बहुत ही कम आवाज में होती है ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है विथ यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, वक्त हो चला है लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेले। ठीक है, आज का जो सीन है ना, मेरे ख्याल से रिलेटिवली इजी है। और वो जो सीन में वो जो बातें कर रही है एक्ट्रेस, दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट द मूवी। ध्यान से सुनो, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई एंड हियर इट गोस।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: आप कॉफी लेंगे? यहां की कॉफी बहुत अच्छी है, डोंट वरी, पेमेंट मैं करूंगा, इट्स फ्री।
3: I don't take coffee. Caffeine बहुत होता है।
2: Espresso please. One.
3: You know अभी क्या हुआ है? अभी जो तुम ये सब nonsense कर रहे थे ना, उसमें मुझे याद आ गया कि मेरी रिंग एक्चुअल में किधर गिरी है।
0: All right. I was just waiting for this dialogue, and this dialogue itself says a lot about this movie, and I like this movie. Yeah, for some reason, पता नहीं ये क्यों flop हो गई थी. But let's come to this. 5000 1896 is my WhatsApp number. यहाँ पर आइए, voice message भेजिए, type करके भेजिए, and I have already so many messages here flowing in. Kumail का message आया है, then I have Mohammad Yusuf Khan messaging me, then I have Suleiman messaging me, and yes, you all are right, guys. और बस ऐसे में यहाँ पर कौन है ये, कुंवर जी, yes, कुंवर का भी message आ गया है. So with this, अगले गाने की तरफ बढ़ती हूँ मैं, और मैसेजेस की तो भरमार है. Let me go and reply to them. Meanwhile, you enjoy this song. श्रुति रानी की आवाज में

0: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
0: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
0: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
2: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
6: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
3: The mentalist Suhani Shah.

0: आए हाय यार, वो वक्त था 90s का जब ये एक्ट्रेस कितनी खूबसूरत लगती थी ना. अब भले ही वो करिश्मा कपूर हो इस गाने में, एंड देन आल्सो इन दिस मूवी माधुरी वाज लुकिंग सो स्टनिंग यार. और फिर वो शाहरुख खान का एक नटखट एज वेल एज एक इनोसेंट लुक, आई यार एवरीथिंग अबाउट 90s वाज जस्ट प्योर इनोसेंस. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और जब भी बात ना 90s वगैरह की होती है ना, तो आफरीन थोड़ी सी कैरीफॉर एकदम क्या कहते हैं उसे, अरे यार जो भी हो जो एकदम बह जाती है बस. और बस बहते बहते ये भूल गई कि हम तो यहाँ पर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेल रहे थे. और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं बंधुओं, सो लेट्स हियर आवर सवाल पहले और फिर इनके बारे में भी बात करेंगे.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: आप कॉफी लेंगे? यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है, डोंट वरी, पेमेंट मैं करूंगा, इट्स फ्री.
3: आई डोंट टेक कॉफी, कैफीन बहुत होता है.
2: एस्प्रेसो प्लीज वन.
3: यू नो अभी क्या हुआ है, अभी जो तुम सब नॉनसेंस कर रहे थे ना, उसमें मुझे याद आ गया कि मेरी रिंग एक्चुअल में किधर गिरी है.
0: और क्या आपको याद आया कि यार ये एक्चुअल में कौन सी मूवी है? सो वेल, बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आए हैं एंड लेट मी टेल यू एवरीवन इज एब्सोल्युटली राइट यार. और चलिए आंसर पहले सुन लेते हैं.
4: द नेम ऑफ द मूवी इज हैरी मेट सेजल.
0: ऑलराइट.
4: डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली.
0: बिल्कुल सही.
4: प्रोटैगनिस्ट शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा.
0: बिल्कुल सही.
5: गुड मॉर्निंग आफरीन, दिस इज कुमार पांडे.
0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग.
5: छुट्टी गया था एक महीने के बाद.
0: अरे वाह,
5: फर्स्ट शो आपका देख रहा हूँ.
0: अरे वाह.
5: जो अभी आप सवाल पूछे उसका जवाब है हैरी मेट सज्जल.
0: That is right. And Kuwar Pandey, hope आपकी छुट्टियाँ बहुत बेहतरीन गुजरी है. और ऐसे ही कुमैल का मैसेज, सुलेमान का मैसेज, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज, देन आई हैव मोहसिन मैसेजिंग मी, और कौन है ये यहाँ पर, जुल्कर नैन का मैसेज. और सभी का यही कहना है कि आफरीन, ये तो डायलॉग अपने अपने खान साहब यानी किंग खान का है. मूवी है हैरी मेट सेजल और उसका गाना. आई थिंक सो दिस सॉन्ग हैज टू बी द बेस्टेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस मूवी. नहीं, and there can be no haters of the song. How? Arijit Singh ki awaaz mein. Mike se dil tak Afreen ke saath bane rahiyega on Mirshid's Hot. Hello.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं कप सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking, mama।

0: बंजारे का ये गाना और जेंजी के ना ऐसे कुछ कम ही गाने हैं जो मुझे समझ आते हैं और अच्छे भी लगते हैं, सुनने अच्छा लगता है. दिस इज वन ऑफ देम. मिर्ची घड़ी में फिलहाल बज रहे हैं 8:05 और वक्त हो चला है कि आपको ना कतर की कोई खबर बताऊं.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वक्त देख लिया है तो ये भी देख लीजिए कि वक्त हो गया है कि अब ये जो डेट फेस्टिवल है ना वो खत्म होने आ गया है. यस, और अगर अभी तक आप वहाँ गए नहीं है ना तो आई थिंक सो यू आर गोना मिस आउट ऑन समथिंग रियली हेल्दी, रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली गुड क्वालिटी. मैं बात कर रही हूँ द 11th लोकल डेट फेस्टिवल जो सुबह वाकिफ में हो रहा था, और आज का जो दिन है 10th ऑफ अगस्त इज द लास्ट डे. मैं ये बता दूँ भाई वहाँ जाने की वजह क्या होनी चाहिए. पहले तो ये कि वहां पर इतनी रिकॉर्ड सेल्स हुई है, पहले तो तकरीबन 153,000 केजी ऑफ फ्रेश डेट्स हैव बीन सोल्ड देयर. दैट्स अ वोपिंग ह्यूज नंबर. उसके अलावा 75,000 विजिटर्स से ज़्यादा विजिटर्स, मतलब सोच लीजिए ये कतर में आधा हमारा कतर तो खाली है, लोग अपने होम टाउन गए हैं वेकेशन मनाने, उसके बावजूद भी यहाँ पर 75,000 विजिटर्स गए हैं जो ये लोकल डेट फेस्टिवल का पूरी की पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं देखा जाए तो. और यहाँ पर इतने सारे किस्म के डेट्स हैं ना, सो बता दो मुझे ना इन डेट्स के बारे में एक्चुअली नहीं पता था. आई माइट बी वेरी इमेच्योर, आई डिडंट नो अबाउट शीशी डेट्स, खेनाइजी डेट्स, बरही डेट्स, खलास डेट्स, ऐसे भी होते हैं एंड मेनी अदर वैरायटीज. मुझे कौन से डेट्स पता है, मुझे मजदूल पता है, सफ़वा पता है, अजवा पता है, यस एंड देन देर इज सम खुदरी आई थिंक सो समथिंग लाइक दैट. आपको पता है कौन से, चलो लेट मी टेस्ट योर नॉलेज ऑन दिस कि कितने डेट्स की वैरायटी होती है, आपको कितने नाम पता है. मैंने यहाँ पे 3 से 4 नाम बता दिए हैं आपको. यू हैव टू टेल मी सम मोर नेम्स इफ यू नो. 5000 1896 मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मुझे डेट्स की वैरायटी के नाम कौन सबसे ज्यादा बताएगा मैं वो देखना चाहूंगी. मीनवाइल आज का लास्ट दिन है, जाइए 4 बजे ये खुलेगा और 9 बजे ये आज बंद हो जाएगा. ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ इज द प्लेस. माइक से दिल तक आफरीन जुड़ गई है आपके साथ और अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में चक्का जासूस का ये गाना और मिर्ची इट्स हॉट.

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na
1: viva la burga. हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार।
1: Hello?
2: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीबी में झगड़ा हो जाता है। अब गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने Hello? माना जल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या अब आप पागल हैं क्या?
2: पागल आप है, पागल आप
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप।
3: किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
2: आज के बाद घर से आ रही ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

नकाश अजीज और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना स्लो मोशन बिल्कुल फास्ट मोशन में खत्म होता हुआ। एंड लेट मी टेल यू, जब भी सलमान खान कोई ऐसा गाना करते हैं ना, अब वो भले ही वो क्रिंजी हो, लिरिक्स है वही हो, लेकिन ना वो जो वाइब होती है ना इनके गानों में, पार्टियों की जान तो सलमान खान की प्लेलिस्ट ही लाती है मुझे लगता है ना। अब आप सोच रहे हो कि भाई मंडे मॉर्निंग कहाँ तुम पार्टी शार्टी की बातें कर रही हो आफरीन, हमारा ध्यान और फोकस कहीं और है, हम बिल्कुल फोकस में काम करने जा रहे हैं और वो ऐसा दिन जहाँ बिल्कुल मन नहीं करता भाई, बस कोई ना यार, आज का दिन निकल जाएगा ना कल से, मार्क माय वर्ड्स, ऐसे रफ्तार से पूरा हफ्ता भागेगा ना। ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे कब आ जाता है, थर्सडे तो जाने ही, तो हमारा तो वीकेंड शुरू हो ही जाना है। वेल टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज 10th ऑफ अगस्त, मंडे का दिन है, आ ही गया ये दिन, तो चलो काम की बात लेकर आ ही जाती हूँ आपके पास। वेल देखो, आज के एक्सचेंज रेट जो है आईपे के, ये कहते हैं इंडियन रुपीज, आपको 31 रियाल के बदले इंडियन रुपीज मिल रहे हैं 26.10, वहीं जाना। पाकिस्तानी रुपीज जो मिल रहे हैं आपको 76.19 मिल रहे हैं। बांग्लादेशी टाका आपको मिल रहे हैं 33.94, वहीं जनाब। श्रीलंकन रुपीज जो है 92.02 मिल रहे हैं, और 31 रियाल के बदले आपको नेपाली रुपीज जो है 41.73 मिल रहे हैं। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 1 & only 89.6 मिर्शीवान। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, और मधुमती बागची की आवाज में अगला गाना जो साल 2025 का या 2024 का, हाँ इन दोनों में से कोई एक साल का सुपर हिट गाना रहा है।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. टीएनसी सप्लाई.
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo. बुक योर्स नाउ.
1: द मेंटलिस्ट सुहानीशा.

0: हनी शबनाथियाल और सूर्य रघुनाथन की आवाज में ये गाना राइट हियर अभी आपने एंजॉय किया है। एंड चलिए जरा गेम शेम की तरफ बढ़े। और टाइम हो गया है कि मैं मेरा मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोलूं। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। वेल, आज के मिस्ट्री बॉक्स में से ये तीन एक्टर्स के नाम निकले हैं, एक्टर एक्ट्रेस स्टार कास्ट के नाम निकले हैं, और जो मैं बताने वाली हूँ आपको, और ये सुनते ही आपने गेस करना है कि आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है जहां पर ये तीन एक्टर्स कैरेक्टर्स ये प्ले कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स नहीं है बट एक्टर्स है। सो द फर्स्ट वन इज अमरीश पुरी, सेकेंड इज अनिल कपूर, और तीसरी है कह सकते हैं तब्बू। कौन सी मूवी की बात हो रही है बताओ बताओ बताओ। 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर, फटाफट से यहाँ पर बताइए वो कौन सी मूवी है जिसमें अमरीश पुरी है, अनिल कपूर है और तब्बू है। ऐसे बहुत सारी मूवीज नहीं आई है, इनकी एक मूवी आई है। और यहाँ पर कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं विच कुड बी रॉन्ग एज वेल, कुड बी राइट एज वेल। ठीक है, 5000196 इज माई नंबर, फटाफट से यहाँ पर आओ। तब तक के लिए जरा रणबीर कपूर क्या बोल रहे हैं जरा सुने तो।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
3: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय, आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स, इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
2: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हैट ओ हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही।

0: और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिडू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। टीएनसी अप्लाई।
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
0: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
0: The mentalist Suhani Shah. Live

0: शिल्पा राव की आवाज में विशाल ददलानी का साथ राइट हियर। ये गाना आपने सुना वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और वक्त हो चला है कि मैं मेरा मिर्ची का मिस्ट्री बॉक्स खोलूं। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स जहां आज ना मैंने तीन नाम उठाए थे, मतलब बॉक्स में से तीन ऐसे एक्टर एक्ट्रेस के नाम निकले हैं जो एक मूवी में एक साथ काम किए हैं। अब नाम कुछ ऐसे हैं, एक तो है अनिल कपूर, एक है अमरीश पुरी और एक है तब्बू। कौन सी मूवी है, चलिए सुनते हैं।
1: Hi Afreen, good morning. This is Princeton here.
0: Good morning.
1: The movie name is Virasat, starring Amrish Puri, Anil Kapoor and Tabu. Have a lovely day and thank you.
0: All right.
2: Virasat film hai, Virasat. Anil Kapoor, Tabu aur ye Virasat picture hai, Virasat.
0: Are bhai, bilkul sahi. Aap itne excited ho gaye, mujhe samajh mein aa raha hai ki aap shayad gaadi chala rahe the aur aapko ekdam answer sahi aa gaya aur ekdam excitement mein aapne hame jo message bheja hai, bilkul sahi jawab hai. Having said that, yahan par aur bhi bahut sare messages aaye hain. Ye kaun hai, Muazzim Thakur ka message hai. Then I have Mohammad Yusuf Khan, then I have your Ahana Gurung. इनका भी मैसेज आया है ये कहते हुए कि विरासत मूवी है ये, और इनफैक्ट रिक्वेस्ट भी आई है। और मैंने ये सोचा भी था कि भाई मैं विरासत का ना ये वाला गाना ही बजाऊंगी। 1997 की विरासत के बारे में पहले तो कुछ बात बताऊं मैं कि तब्बू का किरदार वाज एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव। मतलब वो इतने ग्लैमरस से इतने सटल रोल में आई है। वैसे ये जो रोल था डायरेक्टली उनके पास नहीं गया, बहुत सारे लोग थे, श्रीदेवी, जूही चावला, देन रवीना टंडन, देन ऑल्सो there was who मनीषा कोयराला, जिनके पास ये रोल पहले गया, एंड देन फॉर सम रीजन दे ऑल टर्नड इट डाउन एंड अल्टीमेटली इट वेंट ऑन टू तब्बू, और तब्बू ने एक्सेप्ट किया और बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई किया इस कैरेक्टर को। यही गाने की रिक्वेस्ट आई थी, कुमार सानू की आवाज, एंड आई जस्ट लव जसपिंदर नरुला की आवाज इसमें, जस्ट वन साइडेड है ना। मिर्ची पर आफरीन है आपके साथ। Enjoy this beautiful track from Virasat on Mirchi Thought.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है। मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू, सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, गाना अच्छा लगा ना आपको? 2000 की वाइब ऐसे दिया ना, ऑफकोर्स लगना ही है क्योंकि हमारे इमरान हाशमी की मूवी का गाना है, यानी आवारापन 2 का गाना है। भले ही चाहे के की आवाज़ नहीं है इसमें, जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग के की आवाज़ में ये गाना कैसा लगता। वी जुनून, आई थिंक सो द AI जो है ये वो भी कर लेगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और जरा बात करते हैं बच्चों के बारे में। भाई, बच्चों का टाइम चल रहा है, स्कूल्स अभी तक खुली नहीं है, और अगर देखो एंटरटेनमेंट के, अब आप बोलोगे कि हम भाई आफ्रीन टॉय फेस्टिवल भी लेकर चले गए, कलर्स भी लेकर चले गए, अब क्या करें भाई, इन्हें एंटरटेन करना है और कुछ दिन बाकी है। तो मैं बता दूं कि कतारा में, यानी हमारे जो उधर एम्फीथिएटर है, प्लानिटेरियम है, नॉट एम्फीथिएटर, द प्लानिटेरियम जो वहां पर है, वहां पर फ्री शोज थ्रू आउट ऑगस्ट है। अब कौन से दिन है, क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगी यहाँ पर आपको। जैसे कल एक शो हो रहा है, इनफैक्ट 2 शो हो रहे हैं कल। 5 बजे एक है द परफेक्ट लिटिल प्लैनेट, और 6 बजे एक है द ग्रेट सोलर सिस्टम एडवेंचर, और फिर 11th को ये शो है, मतलब कल। उसके बाद में 18th को शो होने वाला है जिसका नाम है वॉच स्टार्स, और फिर पोलारिस 3D शो 6 बजे है। 25th को भी शो है, डेट्स याद रख लो खाली, 11, 18 और 25 तारीख, 5 बजे 6 बजे, ऐसे 2 शोज होने वाले हैं ये 3 दिन पर, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। यही तो मजे की बात है कि अब आपको यहाँ पर जाना है ना, तो एक दिन पहले टिकट्स जो ओपन हो जाती है, ई टिकट्स है, ऑनलाइन है, कतारा की वेबसाइट पर है, एंड इट एक्चुअली ओपन्स एग्जैक्टली 1 डे बिफोर ईच स्क्रीनिंग। तो आप ऑनलाइन जाकर ये ई टिकट्स बुक कर लीजिए और वहाँ पर 30 मिनट्स प्रायर पहुँच जाइए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। और जब आपको फ्री मिल रहा है इस स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल प्रोजेक्टर पर, एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस है, और क्या चाहिए दोस्त। तो बता दिया मैंने, देखो बच्चों का और एक जुगाड़ हो गया इधर अपने पास। चलिए फिर गानों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और देव नेगी, पलक मुशल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वेल मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:08 की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बकवा दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी
3: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
2: नहीं,
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए।
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah, live

ऐसा ना मूवी में आपने देखा होगा कि मन में ऐसे कोई आप बात कह रहे हो अपने आप से और फिर कोई सामने वाला इंसान वो एग्जैक्टली जान जाए कि आपके मन में क्या चल रहा है। अब ये सुपर पावर वाली चीज ही है ना, क्योंकि माइंड रीडिंग सुनने में तो सुपर पावर लगती है, बट अगर कोई मेंटलिस्ट आपके सामने राइट इन फ्रंट ऑफ यू आपके दिमाग में जाए और पता लगाए कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है तो कैसा लगेगा। वेल, दिस इज एग्जैक्टली द वर्ल्ड ऑफ सुहानी शाह। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे सिंपली आफरीन को और इंडिया की मोस्ट पॉपुलर मेंटलिस्ट में से एक मैजिशियन, माइंड रीडर, और उनके शोज का फन ही ये है कि आप सिर्फ ऑडियंस नहीं होते, आपका दिमाग भी शो का पार्ट बन जाता है। और अब सुहानी शाह हमारे कतर आ रही है लाइव ऑन स्टेज 25th of September। यू हैव टू गेट रेडी फॉर एन इवनिंग ऑफ माइंड गेम्स, माइंड सरप्राइजेस एंड दोज वेट What? What just happened? ऐसे वाले moments भी। और सबसे खास बात है, this one is being brought to you by हमारा own मिर्ची। मिर्ची लेकर आ रहा है, तो एक काम करना है कि शो में जाने से पहले डिसाइड करके जाना है कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा, बस इतना ही करना है जो इम्पॉसिबल है। मतलब आप जो भी सोच रहे हो ना, सुहानी इज गोइंग टू रीड योर माइंड जस्ट लाइक दिस। सो 25th of September, mark your dates, happening at QNCC, सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और ये जो है, इसकी टिकट्स आपको SCT सुनो सिटी पर मिल जाएगी। फटाफट से टिकट बुक कर लो बॉस, बाद में फिर ना पछतावा बहुत होता है जब आप दूसरों के रील्स देखते हो, स्टोरीज देखते हो कि वी वेंट फॉर दिस शो, इट वॉज सो मच फन, ये वो फलाना डिमकाना, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, फिर उसके बाद में ना फोमो हो जाएगा आपको, इसलिए कह रही हूँ। मीनवाइल मैं हूँ आफरीन आपके साथ, राइट हियर माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: देख

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah.

लता जी और कुमार सानू की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना, जहाँ पर ये दोनों कितने प्यारे लग रहे थे ना, सलमान खान इनफैक्ट दिस मूवी में ही हैज लुक्ड द बेस्ट। 90s की कोई भी मूवी उठा के देख लो और ये मूवी उठा के देख लो, जब प्यार किसी से होता है, आई थिंक सो सलमान खान की ये बेस्ट मूवी है। लता जी और कुमार सानू की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना, जहाँ पर ये दोनों कितने प्यारे लग रहे थे ना, सलमान खान इनफैक्ट दिस मूवी में ही हैज़ लुक्ड द बेस्ट। 90s की कोई भी मूवी उठा के देख लो और ये मूवी उठा के देख लो, जब प्यार किसी से होता है।

0: बस जिंदगी धीरे धीरे समझा देती है, और शायद उम्र के साथ एक बात सबसे ज्यादा समझ आती है कि हर चीज हमारे हिसाब से हो ये जरूरी नहीं, और जो हमारे हिसाब से ना हो उसे हर बार बदल पाना ये भी जरूरी नहीं है। आज के अल्फाज जो है आफरीन के, कुछ इसी ख्याल पर है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, मैंने रफ्ता रफ्ता जिंदगी को समझना शुरू किया है। मैंने रफ्तार रफ्तार जिंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला जिंदगी तो सब्र के अलावा कुछ नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, और कुछ मांगा और वो ना मिले तो सब्र। और शायद सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, कभी कभी सब्र का मतलब होता है हर बात का जवाब ना देना, हर जाने वाले को रोकना नहीं, और हर अधूरी ख्वाहिश से शिकायत भी ना करना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे, तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क, हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी।
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है, इट इज वेरी इजी टू ट्रोल बट इट्स नॉट ईजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's Hot
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Well, Arijit Singh and Sunidhi Chauhan ki power pack awaaz and meri sabse favorite film ka ye पावर पैक सा गाना आई एम टॉकिंग अबाउट ये जवानी है दीवानी बस ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया लेकिन हाँ कुछ कुछ बातें जो है ना मुझे ऐसा लगा कि इस गाने की लाइंस मेरे लिए लिखी गई हैं
1: मिर्ची अंशु
0: Very good morning. Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैंने जो है ना एंट्री कर ही लिए एंड अगर आज के दिन को देखने की कोशिश करें बड़ा ही प्यारा बड़ा ही खूबसूरत सा दिन बिकॉज टुडे इज मंडे सावन का ये दूसरा आज खूबसूरत सा सोमवार मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके दिल की ख्वाहिशें हैं जो भी आपकी मुरादें हैं यार बस उस काम के पीछे उस अच्छे मिशन के पीछे आप लगे रहें अच्छा काम करते रहें एंड बाकी ना एक बात तो तय है जब दिल से कोई कोशिश की जाती है दिल से कोई दुआ मांगी जाती है तो ऊपर वाला जो है ना ज़रूर उसे कबूल करता है एंड आप जितना चाहते हैं जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसे आपकी ज़िंदगी में शामिल करता है चलिए सुबह सुबह आपके लिए मैंने एक अच्छी सी विश तो कर ली लेकिन ना आज आपसे एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी दुआ कुछ इस तरह की इस वीकेंड अगर मैं कहीं थी सो दैट वॉज इंडिया मैं चेन्नई में थी चेन्नई में एक बहुत ही खूबसूरत event hai. It was basically for the Events and Entertainment Association of India, जिसे मैं host करने के लिए गई थी अब जब मैं वहाँ पर पहुँची एक चीज़ रियलाइज हुई जब आप बहुत सारे कलाकारों के सैलाब के बीच होते हैं ना जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं एंड जब आप वहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो समझ में आता है कि यार हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए कितना है हम ना अक्सर इस होड़ में रहते हैं कि हमें जो है उससे बेहतर करना है उसे जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना है मतलब कॉम्पिटिशन की फीलिंग जो है ना चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो इंडस्ट्री हो डे टू डे लाइफ हो ये हर जगह होती है लेकिन अगर आप अपनी सोच को ज़रा बदलने की कोशिश करें और ये सोचें कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं या जिन लोगों के बीच हैं ठीक है यार हेल्दी कॉम्पिटिशन तो हर जगह होना चाहिए लेकिन अगर वो सीखने की फीलिंग हो ना भाई ना ही आपकी ग्रोथ जो है वो एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पर पहुँचती है बल्कि आपकी सोच जो है ना वो भी हमेशा अच्छी होती है चलो एक काम करो जहाँ पर भी हो जिनके भी बीच हो आपके आसपास चाहे जो कोई भी शख्स हो हर किसी के पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपको अच्छा बताने के लिए ज़रूर उसे महसूस करें ऑब्जर्व करें अपनी जिंदगी में शामिल करें और उसके बाद जो चेंजेस आए हैं वो मुझसे जरूर शेयर करना लेकिन अभी फिलहाल कुछ करो ना करो मुझे एक गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दो यार मेरे साथ कनेक्टेड हो तो ये बात मुझे पता तो चले 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु मीनवाइल शो की शुरुआत करते हैं लकीले की आवाज में एक अगले प्यारे से गाने के साथ एंजॉय बंदी का नाम अंशु

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virpa la burka.
1: Mirchi, burka. उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी, इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है।
1: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया। आपका ग्रुप मिल गया
2: सर? इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी जी,
1: हाँ यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। चार यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: इट पटा
3: मिर्ची, फ्रेश माल।
5: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर, वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah.

0: यार विशाल मिश्रा की खूबसूरत सी आवाज़, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल लवली ट्रैक इट इज़। सच कहूँ फिल्म स्त्री में जब मैंने पहली दफ़ा ये गाना सुना था ना, तो कई गाने ऐसे होते हैं जिनसे आप एंटरटेन होते हैं, कई गाने ऐसे होते हैं जो आपको सूदिंग लगते हैं, लेकिन कई गाने ऐसे होते हैं जब सुनने के बाद दे लीव यू इन ओ, आप पूरी तरह से मेसमराइज हो जाते हैं। एंड ये गाना सुनने के बाद ना बस मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि यार कोई गाना इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वैसे मुझे मालूम है कि ये आपके दिल के जज्बात थे जो आप मेरे लिए पेश करना चाहते थे, बस आपके बिहाफ में मैंने खुद के लिए गाना बजा दिया। हैविंग सेड दैट, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:25।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे अगर खूबसूरती की बात कहें तो किसी ने बहुत खूब कहा है, beauty lies in the eye of the beholder. मिर्ची अंशु, यार खूबसूरती जो है ना, इसको डिफाइन करने का पैमाना, इसके बारे में बात करने का तरीका, ये हर किसी के लिए काफ़ी अलग है। हर किसी के लिए खूबसूरती का पैमाना जो होता है वो काफ़ी अलग अलग होता है। देखिए, किसी को किसी के लुक्स से, किसी के चेहरे से, यू नो, किसी की आँखों से खूबसूरती को देखने का तरीका होता है। किसी के लिए कोई बातें जो होती हैं वो काफ़ी खूबसूरत होती हैं। किसी के लिए एहसास जो हैं वो खूबसूरत होते हैं। किसी के लिए लाइफ में एक्सपीरियंसेस काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो इवेंचुअली ब्यूटीफुल या ब्यूटी को डिफाइन करना किसी एक शख्स की काबिलियत है ही नहीं, ये तो हर किसी के लिए काफ़ी अलग अलग है। लेकिन एक बात कहूँ यार, मुझे एक बात लगती है कि अक्सर जो है ना, हम जब किसी और चीज़ को देखते हैं या किसी बात को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है यार ये कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, अगर आप जेन्युइनली दिल से किसी और बात को अप्रिशिएट करें या आपको कोई बात अच्छी लग रही है, वहाँ तक खूबसूरती उस बात की अच्छी है। लेकिन जिस पल जिस मोमेंट वो फीलिंग जो है ना खुद को कम आंकने में आ जाए, कंपैरिजन मोड में चला जाए, वो गलत है यार। यार सच कहूँ, इंसान जब तक अपने अंदर खूबसूरती नहीं ढूंढ सकता ना, तब तक दुनिया की कोई चीज़ जो है उसे दिल से खूबसूरत लगी नहीं सकती। एंड अगर मैं अपने बारे में सोचूँ ना, तो कभी कभी जब मैं अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ, सो नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, या ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं बोस्ट करके बात खुद के लिए सोचूँ, लेकिन सबसे पहले ना मैं अपनी ज़िंदगी में जो मेरी अच्छाइयाँ हैं मैं वो देखने की कोशिश करती हूँ कि ऊपर वाले ने जब मुझे बनाया है तो किन अच्छी अच्छी बातों से मुझे नवाजा है, वो कौन सी खूबसूरत बातें हैं जो मेरे अंदर बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट है। एंड उसके बाद फिर इस फैक्टर पर मैं फोकस करने की कोशिश करती हूँ, हाँ ये सब तो अच्छा है, लेकिन अब और कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जो बुरी नहीं, जिन्हें और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। एंड जब से ये एटीट्यूड अंदर में आया ना भाई, सच कह रही हूँ भैया, खुद को अंडर एस्टिमेट करने वाली फीलिंग जो है ना पूरी तरह से कम और ख़त्म हो चुकी है। तो दुनिया में बहुत लोग खूबसूरत हैं, बहुत चीज़ें प्यारी हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत अगर कोई है तो वो हम खुद हैं। जिन्हें बात रियलाइज़ हो जाए, देखो खुद से प्यार होगा, और जब तक खुद से प्यार ना होगा इंसान किसी और से प्यार कैसे करेगा यार। अगर बात सही लगी यार, एक गुड मॉर्निंग, थैंक यू, कुछ तो कनेक्ट वाला मैसेज हो ना कि मुझे पता चले कि तुम मेरी बात सुन रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। 5000 1896 5000 1896, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम, मिर्ची वन कतरिया, मिर्ची अंशु। दोहा वालो, दिल से तुम्हारा इंतजार है यार। कविता सेठ, नीरज श्रीधर की आवाज़। चलिए बंधु, तुम्हारे लिए गाना है, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

वेलो शाल शेखर की क्या गजब की कॉम्पोजिशन, बी प्राक की पावर पैक आवाज। इन सच कह रही हूँ, बी प्राक का ये पहला गाना है जिससे मुझे दिल का मरीज नहीं बना है। नहीं, अक्सर क्या होता है ना, जब दिल दुखा हुआ होता है एंड जब मैं बी प्राक के गाने सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई आज जो हॉस्पिटल तक तो मैं जरूर पहुँचूंगी इन ऑल गुड वेज एंड मीन्स आई जस्ट लव हिम टू द कोर। बॉस, लेकिन इस वक्त आपको ये मैं जरूर बता दूं कि ये जो आपकी हीर है ये 101% आसमानी है। नहीं, मेरी बातें सिर्फ आसमानी नहीं होती, मैं उस एक ऐसी शख्सियत की बात कर रही हूँ जो आपको सोच में कुछ इस तरह से ले जाएगी या आपकी सोच को मजबूर कर देगी कि भैया ये ख्याली पुलाव जो है ना वो आसमान की तरफ तुम पकाना बंद करो वाली फीलिंग एंड थॉट जो आपके अंदर ज़रूर आएगी, लेकिन जैसे ही वो बबल फटेगा ना तब समझ में आएगा गुरु कि जो है वो बात 101% सही है। वेल, हम ना अक्सर ये कोशिश करते हैं इस बात को सोचने की समझने की कि भाई किसी और के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब ज़रा सोचो कि कितनी दफ़ा तुम्हारे साथ घर पर ऐसा हुआ है कि तुम अपनी बीवी से बात कर रहे होते हो एंड बस वो देखती है तुम्हारी तरफ, कुछ कहती भी नहीं है एंड दिल से बस एक ख्याल आता है कि कुछ हो ना, भगवान ऐसी कोई शक्ति ताकत दे दे जिसके चलते ये पता चल जाए इस वक्त ये सोच रही है तो क्या सोच रही है। वैसे वाइफ्स के लिए ना ये काम बड़ा आसान होता है ना, वो ऐसी मिन्नतें कभी मांगती नहीं है, उनको बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिकली ये लगता है, इनफैक्ट पता होता है कि मेरा पति इस वक्त सोच रहा है तो क्या सोच रहा है। अब वो उनके थॉट पे कितना सच है कितना गलत है वो जाने, लेकिन हाँ सब कुछ जानना सब कुछ पहचानना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन इतना कहना चाहूँगी, किसी और को हम समझें किसी और को हम जानें उसके बजाय ज़िंदगी में सिर्फ इतनी ही कोशिश कर लेना भाई कि हमारे दिमाग में एट एनी पॉइंट इन गिवन टाइम क्या चल रहा है खुद को ही समझ लो, बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बाकी तुम्हारे दिमाग को इस वक्त पढ़ने के लिए कोई और है जो बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। वेल, अब तक के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, फिर से दोहरा दूं, अगर भारत की सबसे बड़ी मेंटलिस्ट की मैं बात करूं, मैजिशियन की बात करूं, एक ऐसी जादूगर की बात करूं जो किसी के माइंड को रीड करना जानती है, समझना जानती है, इनफैक्ट सही डायरेक्शन में सोचा कैसे जाए ये बात आपको सिखाना जानती है, तो उस बंदी का नाम है सुहानी शाह। 25th of September वो तारीख है जब सुहानी शाह कतर में पहली बार लाइव परफॉर्म करेंगे एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। एंड आप ये जानते हैं कि इस वक्त चल रहा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर, जिसके चलते हर एक कैटेगरी में आपको मिल रहा है 20% का ऑफर। इनफैक्ट एक कैटेगरी ऐसी है जहां पे 160 रियाल में सीधा आप दो टिकट्स खरीद सकते हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, जाओ फटाफट से अपनी टिकट्स जो है सिक्योर करके आओ। ऐसे एक्सपीरियंसेस कहाँ लाइफ बार बार देती है, तो जब मिल रहा है ना यार दिल से जियो एंजॉय करो एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल। टिकट्स बुक करने के लिए स्नूनू एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पे स्नूनू सिटी टिकटिंग ऐप में जाना है एंड टिकट सिक्योर करनी है। कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन है सवाल है अभी आपके दिमाग को मैं पढ़ के बता दूंगी, मैसेज करो मुझे 5000 1896। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल रूप कुमार राठौड़ की प्यारी सी आवाज़ अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु। दिल को

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
2: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
1: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at SCT Snoo Noo. Book yours now.

हे क्या हाल चाल, एक बात बताएं। पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ना चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, कुछ भी कर क्यों ना रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थॉट्स हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंट्रिंसिक होते हैं। मतलब जो वो सिर्फ हमारे होते हैं, अपने होते हैं। हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में वो एक थॉट जो है ना हमारे हमेशा चलता है। अब चलिए, सबसे पहले आज आपको एक बात बताती हूँ कि आपको मालूम है ह्यूमन माइंड इतना कमाल है कि अगर आप सिर्फ एक दिन की बात करें ना तो तकरीबन 70,000 थॉट्स जो हैं हमारे दिमाग में क्रॉस करते हैं। यस, 70,000 थॉट्स पर डे, कई लोगों के बारे में, काम के बारे में, रैंडम चीज़ों के बारे में जिसका शायद कोई सर पैर नहीं, एनालिसिस नहीं, फिर भी उनके भी बारे में। लेकिन इन सबके बावजूद फिर भी कोई लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त आपकी लाइफ में होते हैं, कई बार स्ट्रेस के चलते, कई बार प्यार के चलते, कई बार किसी काम के चलते, लेकिन ऐसा कोई ना कोई शख्स जो है आपकी ज़िंदगी में ज़रूर है। पता है क्या, मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हमारे पास इतनी काबिलियत है, इतनी ताकत है कि एक समय में हम इतनी सारी सोच को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें, तो क्यों ना सबसे पहला शख्स हम खुद हों जिसके बारे में एक इंसान सबसे ज़्यादा सोचे। यार, हम ना अपनी ज़िंदगी को बहुत तरह से बिताते हैं। हमें ये लगता है कि परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करना है, घर वालों के लिए करना है, ऑफिस में अच्छा काम करना है, बॉस को खुश करना है, मल्टीपल थॉट्स इन अ डे, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो, यही वो सफ़र है जो ज़िंदगी को मुकम्मल करता है। लेकिन जब तक हम खुद के बारे में सबसे अच्छा ना सोचें, यार कैसे किसी और के बारे में सोचेंगे। एंड यही बात जो है मैंने अब से कुछ देर पहले कही थी, तो इतना ही कहना चाहूँगी यार, मोहब्बत वो नहीं जो लफ्ज़ों में बयां हो जाए, मोहब्बत तो वो खामोशी है जो हर जगह आपको महसूस हो जाए। लेकिन जब ये मोहब्बत सबसे पहले खुद से हो ना, तो दिल में कोई उतरे या ना उतरे, लेकिन ज़िंदगी का हर पल एक इंसान के लिए सुहाना ज़रूर बन जाए। तो बस मोहब्बत और सोच का ये जो सफ़र है, अगर शुरू करना है ना, तो सबसे पहले आज खुद से करना है, ये बात तो तय है। तो भैया वो ज़रूर करना जो दिल को पसंद है, आज के लिए कम से कम हर दिन एक ना एक काम करना। बाउंड्रीज किस तरह से सेट करनी है वो आपको पता है, कल के दिन पता चला आलू टमाटर मेरे घर पे मेरे सर पे गिर रहे हैं, अंशु ने कहा था जो करना है करो, तुम्हारे घर वाले मुझे मार रहे हैं। महमूद की आवाज़ राघव का साथ इन्हें अगला प्यारा सा गाना सुनाती हूँ। एंड अगर बातें अच्छी लग रही है तो मुझे फटाफट से एक थैंक यू मैसेज भेज दो, 5000186, वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, दिस पावर पैक सुपर ट्रेंडिंग ट्रैक राइट हियर फॉर यू, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या आप पागल हैं क्या?
2: पागल आप है, पागल आप है, पागल आप है
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया, फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने मेरे साथ जरा प्यार से कह दिए,
2: आज के बाद घर से आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

0: संजू राठौड़ की पावर पैक आवाज। देखो, दोहा की इस गर्मी में मुझे साड़ी का तो नहीं पता, लेकिन दोहा की इस गर्मी में किसी और चीज के हवाले मैं आपको कहीं भेज सकती हूँ।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो, बात इतनी है ना कि बॉलीवुड ने हमारी जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस एंड ट्रेंड्स जो है ना पूरी तरह से बदल के रख दिया है। अब इन दिनों जब भी मैं साड़ी को विजुअलाइज करने की कोशिश करती हूँ तो सबसे पहले मेरे जहन में अगर कुछ आते हैं तो वो है बर्फीली वाली वादियाँ। हाँ, अब की बार अगर मैं कहीं साड़ी पहनूंगी तो मैं तो बर्फ में ही जाके पहनूंगी भाई। नहीं, ऐसा मैंने सोच के रखा है, वो एक्सपीरियंस कैसा होगा ये तो नहीं जानती। अगर नहीं हुआ तो AI की दुनिया यार, हर एक तरह का एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन AI की दुनिया के चलते कोई और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियली नहीं जनरेट किए जा सकते। एंड खासकर जब ये बात जुड़ी हो खाने पीने से, स्वाद से, तो एक बात बताओ ना यार, कोई शख्स AI से अपना पेट भर ले तो कैसे ही भर ले ना। तस्वीरें तो कई जनरेट कर लोगे, टेस्ट वाला मजा ले पाओगे क्या? तो चलिए जी, तारीख भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है, ना आखिरी तारीख है। अगर आज 10th of August की मैं बात करूं तो माइंड यू, आज आखिरी दिन है जब आप लोकल डेट फेस्टिवल एग्जीबिशन जो है कतर में लाइव विटनेस कर सकते हैं। अगर ये एक्सपीरियंस करना है तो सीधा कहीं पहुंचना है तो वो है सूक वाकिफ, वहां का ईस्टर्न स्क्वायर, जहां पे प्रॉपर AC वाले टेंट के नीचे आप डेट फेस्टिवल में जाएंगे, ढेर सारे लोकल डेट्स लाएंगे, अच्छी वैरायटी घर पे कुछ बनाएंगे, अंशु को बुलाएंगे। नो, जस्ट सेइंग, प्लान आपका सेट कर रही हूँ। डेट से बनी हुई बहुत सारी डिशेज हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं, हनी भी है, बहुत कुछ रेंज है यार। जाओ यार, आज आखिरी दिन है, एंजॉय करके आओ। एंड उसके बाद लगे कि वहां AC वाले टेंट के नीचे ही वो साड़ी वाला मजा लेना है तो बस साड़ी पहन के जाओ, किसने रुका है जी। चलिए जी, विशाल डिडलानी और श्रेया घोषाल की आवाज में इस अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

खूबसूरत सी आवाज एंड कहाँ जाना है, कैसे करना है यार, ये सारा का सारा सोल्यूशन मैं आपकी लाइफ में लेकर आई हूँ ना, टेंशन न को यार। मिर्ची अंशु यार, हमारी जो मेंटालिटी है ना, ये बड़ी कमाल है। मतलब अक्सर एंड मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक बस एक ही बात सोचती रहती है कि भाई कहीं से कुछ तो जो है वो फ्री में मिल जाए। याद है बचपन के दिनों में जब हम सब्जी मंडी जाया करते थे अपने घर वालों के साथ या किसी दुकान जाया करते थे, तो चाहे वो जो वेंडर है वो कितने भी पैसे क्यों ना ले, लेकिन हाँ वो जो दो तीन मिर्ची एक्स्ट्रा फ्री में मिलती थी ना, असल खुशी जो है बस उसी में होती थी। जब तक वो ना मिले ना, शॉपिंग जो है मुकम्मल हो तो हो कैसे। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद है, जो किराने की दुकान जाते थे हम, जहाँ से घर का पूरा राशन आया करता था, तो भाई हम जब पिकअप करने जाते थे, भैया पूरा राशन पैक करके रखते थे, लेकिन नज़र जो होती थी ना वो मैंगो वाली पेपरमेंट के ऊपर होती थी कि जब तक दो तीन वो फ्री में ना मिलेगी ना, ना यार भले ही 2000 रुपये क्यों ना दिए हो, लेकिन असल शॉपिंग कंप्लीट होगी जब वो मिल जाए। लेकिन ना लाइफ के हर एक बेहतर एक्सपीरियंस जो हैं तुम्हें हर बार मुफ्त में मिलने लगे तो भाई बात है, तो क्या ही बात, जरा एक बात बताओ ना। लेकिन हाँ, डिस्काउंट जो है वो जरूर मिल सकता है। एंड ऐसे ही कोई डिस्काउंट अगर इस वक्त चल रहा है तो वो है एक ऐसा इवेंट जो आपको मिसमराइज करेगा, एक अलग मैजिकल एक्सपीरियंस देगा, इनफैक्ट ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये किया तो कैसे किया। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह लाइव इन दोहा। दैट इज स्केड्यूल्ड टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कतर ऑन 25th of September at Qatar National Convention Center. And right now, ongoing is the first and the final deal and offer. And I'm talking about the discounts. That is 20% on all categories. Alongside, you can also purchase two tickets for just 160 riyals. जाओ इससे पहले कि ये ऑफर भी निकल जाए, मुफ्त में तो कुछ भी ना मिले, टिकट्स जो अपनी सिक्योर करके आओ। ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइव देखने का मौका कहाँ कहाँ मिलता है यार, बार बार मिर्ची दे रहे, अपना लो, हथिया लो, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
3: मैं करूँ?
4: आप करोगे?
3: नहीं, मैं करवाता हूँ। मतलब मेरा होता है
4: वो तो पता है। मेरा बस चलता है एक एक को घुसण मार के आती हूँ।
3: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड।
2: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
10: 89.6, 89.6.
9: It's hot.

0: सुमनिका मिश्रा घोषाल की खूबसूरत सी आवाज एंड दिस पावर पैक ट्रैक, ये गाना तो इस वक्त आपने और हमने एंजॉय कर लिया, लेकिन जरा देखते हैं आपके नॉलेज के पावर में कितना दम है।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, बचपन के दिनों में ना अगर सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट ने मुझे तंग या परेशान किया तो वो है जनरल नॉलेज। याद है एक जीके का भी पीरियड हुआ करता था, मतलब 5 तो मेजर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होते थे, 1 यूज़ टू बी मॉरल साइंस एंड 2nd यूज़ टू बी जीके यानी कि जनरल नॉलेज। एंड इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा एक और सब्जेक्ट होता था या तो फिर पीरियड होता था जिसका एग्ज़ाम नहीं होता था, लेकिन हाँ वो हमारा सबसे फेवरेट हुआ करता था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पी एंड गेम्स। काश के एग्जाम के नंबर जो है ना उस पर भी काउंट हुए होते। जरा देखो क्लास में हर बार एक सब्जेक्ट में हम फर्स्ट आते हैं, किस तरह से जरूर आते। हैविंग सेड दैट, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने अक्सर दिमाग घुमाया है भाई, क्योंकि अगर इसमें कोई अभियान चलता था ना तो वो बस एक ही, दैट इज रट्टा मारो अभियान। ना यहाँ पे समझने का सोचने का कोई स्कोप ही नहीं है, एंड जो लोग रट्टा मारने में एक्सपर्ट हुआ करते थे भाई उनके देखो कितने मस्त नंबर आते थे, और हम जो है इतना दिमाग लगा लगा कि पढ़ाई के ना कि रट्टा मारने का स्कोप हमारे अंदर था ही नहीं, दिमाग भी लगने के बाद एक पॉइंट के बाद थक जाता था, तो वो भी बेचारा फिर बैठ ही जाता था। चलिए लेकिन देखते हैं कि आपका जनरल नॉलेज जो है वो स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांग है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, अगर लगता है कि सही जवाब आपको उसका पता है तो फटाफट से मुझे करेक्ट आंसर भेजना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000186 5000186 पे। विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम @mirchi1kataria मिर्ची अंशु। एंड क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? द स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, 5000186, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। हिंट दे दिया आपको, ये जो सिटी है ना ये कंट्री भी है। 5000186, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, इंस्टाग्राम @mirchi1kataria मिर्ची अंशु। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज, शाश्वत सिंह का साथ है, अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु, जवाब का इंतजार कर रही हूँ।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताऊं सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूं?
1: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।
2: What?

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: लवली ट्रैक यार, क्या खूबसूरत सा गाना, ये प्यारा सा नया गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब किसी देश की कहानी आप तक पहुंचाई जाए, या तो मैं यूं कहूँ यहाँ बैठे बैठे क्यों ना उसकी सैर आपको कराई जाए। यार पता है क्या, हम जो है ना कई दफा बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन जो बहुत सारी बातें जानते हैं वो अक्सर वो बातें होती हैं जो हमें सोशल मीडिया में, इंटरनेट में या ढेर सारी जगह मिल ही जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंटरनल चीज़ें होती हैं जो आपको तभी पता चलती हैं जब खासकर आप उस देश को विज़िट करें या उसे करीब से जानने समझने की कोशिश करें, उसे महसूस करें। वैसे आपसे कुछ देर पहले मैंने आपसे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा था, एंड आज मेरा क्वेश्चन बस यही था कि अगर हम ये सोचें कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है तो आपका जवाब क्या होगा। चलिए मीनवाइल मैं लोगों के आंसर्स आप तक पहुंचाती हूं। अगर आपको लगे कि सुनते सुनते भी आपको सही जवाब पता चल गया है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मुझे 5000186 पर भेज दीजिए, 5000186। अभी फोन कॉल्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे बॉस, अभी जो है आपके मैसेज एक्सेप्ट किए जाएंगे, देखें लोगों का क्या कहना है।
2: हाय अंशु, दिस इज नदीम। छोटा कंट्री, छोटा सिटी जो आप बता रही हैं वो आयरलैंड है, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 1 लाख से भी कम है, 30-40 हज़ार है बस। उसका खुद का कोई एयरपोर्ट नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। दिस इज नदीम, कतर।
1: नदीम थैंक यू सो मच, गुड ट्राई, गुड एफर्ट। ऑफकोर्स आइलैंड छोटा है, लेकिन शायद इतना छोटा भी नहीं। देखिए कोई और है, गौरव लिखते हैं इट इज वैटिकन सिटी, मोहम्मद अतीक लिखते हैं इट इज वैटिकन सिटी, इसके साथ ही अब्दुल भी लिखते हैं वैटिकन सिटी, और भी बहुत सारे रिप्लाईज आए यार। मौली भी लिखती है वैटिकन सिटी। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर रिप्लाइंग। मैं हर किसी का नेम इस वक्त नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आपके रिप्लाईज जो है वी रियली जेन्युइनली वैल्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। लेकिन करेक्ट आंसर है क्या, वही अगर इसकी सही जवाब को देखने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा देश है कि अगर आप सिर्फ रोम घूमने निकलेंगे ना, तो अगर इस देश का कंपैरिजन करें तो बस चंद मिनटों में आप जो है ये पूरा का पूरा देश जो है एक्सप्लोर कर पाएंगे। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट वैटिकन सिटी, दुनिया का इतना छोटा इंडिपेंडेंट देश कि ये सिर्फ और सिर्फ 44 हेक्टेयर्स के अक्रॉस स्प्रेड है, एंड यहाँ के अगर रेसिडेंट्स को आप देखने की कोशिश करें तो इनकी तादाद 1000 से भी कम है। लेकिन भैया देखो, एरिया के पर्स्पेक्टिव में, लोगों के पर्स्पेक्टिव में ये देश शायद छोटा हो, लेकिन इसकी कहानियाँ जो है ना ये उतनी ही बड़ी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर यहाँ के सिटीजनशिप की आप बात करें तो ये सिर्फ यहाँ पे पैदा होने से आपको नहीं मिलती, इट इज लार्जली कनेक्टेड टू द रोल और सर्विस यू परफॉर्म फॉर द वैटिकन। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आपका जन्म हुआ है मतलब आप अपने आप वैटिकन के निवासी हो जाएंगे, काम पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी सिटी दुनिया की इकलौती ऐसी सोवरेन कंट्री है जिसका पूरा का पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या ही बात है यार, इनके अपने फ्लैग्स हैं, अपने कॉइन्स हैं, इनका अपना अलग पोस्टेज स्टैम्प है, एंड हाँ वो जो कलरफुल यूनिफॉर्म वाले गार्ड्स जो रहते हैं ना, सिर्फ फोटोग्राफ्स में नहीं, आपको एक्चुअली यहाँ पाए भी जाते हैं। और एक और बात बता दूं, भाई यहाँ पे कोई वो रात भर ना इसे डॉग के बाग करने की आवाज़ से नींद नहीं खुलती, ना ही सुबह चिड़िया जो है और मुर्गी जो है कुकड़ुक्कू करती है, नहीं ऐसे हम्मा ऐसे किसी को बाहर भगाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि इस पूरे के पूरे देश में कोई पेट ही नहीं है। इमेजिन नो पेट, क्या बात है यार। देव नेगी की आवाज़, नेहा कक्कड़ का साथ, अरे क्या बात है। 90s नॉस्टैल्जिया में डाइव इन करते हैं, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Gambala. Murga, murga. La vidva la murga. Milci, murga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन था, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार। सारे दिमाग
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस लगाया नहीं।
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
1: नहीं।
2: मैं कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है। अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
1: नहीं सर, क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

Well, Jasmine Sadler's की power pack आवाज़ और बड़ा super power pack track it is. चलिए ये तो मैंने बता दिया, लेकिन पैसा आज हमारी जिंदगी में कैसा पावर लेके आया जरा देखें. मिर्ची अंशु यार देखो, जब अक्सर लोग ये बात कहते हैं ना कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, क्या ही करना है इतना दौड़ भाग करके, मतलब सबसे पहले मेरे दिमाग में तो यही बात आती है कि भैया ये वही लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ना अपरंपार पैसा है. यार उन्हें इतना पैसा देख लिया है कि अब इनको ज़्यादा पैसे से ना मोह माया रही नहीं गई है. क्योंकि आप कितना भी क्यों ना सोच लें या कितना भी क्या ना कह लें कि यार पैसे से क्या होना जाना है, सच बात तो ये है कि ज़िंदगी में पैसा जो है हम सबकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, ज़िंदगी को ज़रूरतों को पूरा करने में, और का बहुत बड़ा हाथ है. चलिए देखते हैं आज का जो पैसा है वो इंक्रीमेंट वाली जरूरत को किस हद तक पूरा कर रहा है. आज का एक्सचेंज रेट जो है बिल्कुल सर चढ़ के बोलने के लिए है पूरी तरह से तैयार. अगर आज के पैसे की आप बात करें, ट्रांसफर करना चाहेंगे, तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.08, पाकिस्तानी रुपीज 76.22, नेपाली रुपीज 41.71, भैया लंकन रुपीज जो है डंका बजाते हुए इस वक्त अगर पहुंच चुके हैं तो वो है 92.08 पे, एंड साथ ही बांग्लादेशी टाका 33.95 पर. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

Well, बादशाह निकिता गांधी की पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ टेरिफिक ट्रैक इट इज. मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब ये गाना रिलीज हुआ था भाई, ये उन्हीं गानों

0: मतलब दो एब्सोल्युटली ऑपोजिट कहे या ऑड एक्सपीरियंसेस एक इंसान को एक साथ कैसे होते हैं, इसकी कहानी, इसकी दास्तां जो है ना, अब मैं आपको बताती हूँ. सो अभी मैं लौटी हूँ चेन्नई से. वीकेंड पे गई थी, दो दिन के लिए गई थी एंड अपने इवेंट के लिए गई थी. आई वाज सपोज्ड टू होस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट इवेंट्स दैट हैपेंस इन द इवेंट्स इंडस्ट्री एंड दिस टाइम साउथ वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस पर्टिकुलर वन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईमा इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन, उनका इवेंट था. अब चेन्नई में जब पहुंची भाई, मतलब एंट्री जो हुई है, स्वागत जो मेरा हुआ है ना, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मौसम कुछ इस तरह से बूंदों के साथ खुशी का इजहार करते हुए मेरी तरफ बरसेंगे एंड साथ वो हवा का झोंका आएगा जो हल्की सी तसल्ली जो है ना, राहत जो है, मन को दे ही जाएगा. एंड सच का वो पानी की बूंदें जिस तरह से मेरे चेहरे पे पड़ रही थी, कहीं ना कहीं कुछ महसूस हुआ ना, तो एक बार फिर से बचपन का वो खूबसूरत सा दौर. यार बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था स्कूल जाने में, इंटेंशनली भीगते हुए जाने में. क्योंकि होता कुछ इस तरह से था कि जब हम पूरी तरह से भीग जाते थे ना, तो हमें मुफ्त की छुट्टी मिलती थी जिसमें ना पेरेंट्स का कोई से था और टीचर्स दया खा के छुट्टियाँ देते थे. अरे पूरे भीग गए बच्चे, ऐसे तो क्लास में रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे, एक बात बैठो, थोड़ी देर यहाँ पे बैठो एंड जैसे ही बारिश कम हो तुम ना घर निकल जाना है. एंड भाई उन छुट्टियों को जो हमने एंजॉय किया है ना यार, उसकी दास्तां बताएं तो कैसे बताएं. लेकिन सच को यार मैं ना इंटेंशनली बारिश में भीगा करती थी, सब स्कूल के लिए नहीं अदरवाइज भी. मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है. कहते हैं ना बारिश एक ऐसा जरिया होता है, जब आप कभी बहुत गम में हैं तो बारिश में भीगे, आपके आंसू कुछ पानी की बूंदों में कुछ इस तरह से मिलते हैं कि लगता है कि सब कुछ है ना एक साथ बस समा ही गया है. जब आप बहुत खुश हैं तो भी आप बारिश में भीगें, पता चलता है ये खुशी का इजहार इस मौसम के साथ करने में सुकून है तो कितना सुकून है. बारिश लाइफ में एक अलग नज़ारा लेके आती है यार, ये बात होता है. एंड उन दिनों को हमने कितना एंजॉय किया है, जब कभी बोट बना के हमने तालाब में छोड़ा हो एंड ये देखा हो कि किसकी नाव जो है दूर कोसों दूर जाती है. तो ये पूरे लम्हे जो एक बार फिर से चेन्नई ने मुझे जीने का मौका दिया एंड आते ही साथ कतर, फिर जो सूरज चाचू ने मेरा दिल खोल के वेलकम किया ना, उनकी कहानी बताएं तो क्या ही बताएं. बोले बेटा वहां का रंग देखा, अब आज का रंग देखो. खूब ख्याल रखिए, गर्मी जो है सर चढ़ के बोल रही है. अगर बारिश में भीगना पसंद है तो मुझे बात बताना जरूर. 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
1: काश

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
2: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे. तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क. हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी.
1: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है. It is very easy to troll, but it's not easy to go to the gym. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
5: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
6: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah live in

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है। मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू, सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sarah, की 90s की याद का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। Actually, जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओ नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा, पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Mirci, burga. Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार, ये
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
1: तो
2: नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: तो आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखने चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: अब गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है, आप
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, 2 लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स, है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं. ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है. लेकिन पता है क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी. एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी. इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई. हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी. मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे. एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है. मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए. आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम. एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम. किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम. लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था. एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है. एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम. और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म. फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए. फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम. आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार. दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए. प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए. जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
3: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
2: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हैट ओ हॉट।
0: हॉलीवुड बोल्डा Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking, mama.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम सबको पता था कि
2: जस्सी जस्सी कोई नहीं
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And the show जस्सी जस्सी कोई नहीं was a hit. क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक. और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक कि दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता. अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार. एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई मोमेंट आया करता था. और सबसे सही बात अबाउट द शो वॉज कि कोई नहीं जानता था कि जस्सी रियल लाइफ में कैसी दिखती थी. एंड इट वॉज केप्ट टू बी अ बिग सीक्रेट. और उस टाइम पर तो ज्यादा टफ भी नहीं था बिकॉज पेपराज़ी एंड सोशल मीडिया तो था नहीं. और जब जस्सी का मेकओवर हुआ एंड वी गॉट टू सी मोना सिंह टू बी द फेस बिहाइंड जस्सी, ऑल वर इन ऑफ हर. और मुझे याद है कैसे हमने उस एपिसोड को किसी भी कीमत पर मिस ना करने की कसम खा ली थी. काफी शोज आए काफी शोज गए लेकिन ये बात तो सच है यार कि जस्सी जैसी कोई नहीं. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virbala, burga. Milci, burga.
2: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको, वन सेकंड। मिस्टर मनोज
3: जी बोल रहा हूँ।
2: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
3: कहाँ
2: ना सर? हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
3: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
2: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
3: मैं दे दूंगा।
2: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बच जाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
3: 4 यूनिट?
2: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ। ब्लड नहीं चाहिए इसको, हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको। यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
3: क्या चढ़ाना है?
2: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
3: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है।
2: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
3: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
2: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
3: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
3: जी, जी
2: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
3: अच्छा,
2: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
3: क्या कह रहा है, समझ नहीं आ रहा।
2: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
3: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
2: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
3: जी
2: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
3: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर 1 मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: अनुराधा जी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अय हाय हाय, देखो पता है 90s का जमाना, तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग के लिए कितना सेफ था और कितना यकीन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज की बात मैं जरूर कर सकती हूँ। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कह देना कि कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, भाई तुम किसी की भी कसम खा लो, मुझे ये पता है कि तुम्हारा डाइट फूड कसम ही है, तुम्हारा चीट फूड भी कसम ही है, और जो तुम्हारा मेन कोर्स यूजुअली तुम खाते हो वो भी कसम है। यानी कि आजकल उठते बैठते सब लोग कसम ही खा रहे होते हैं, और मुझे इस डिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना, क्योंकि वो किस तरीके की कसम खा रहे होते हैं ना, हमें उसकी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं पता है। आप क्या बोलते हो, आप कर लेते हो यकीन इस कसम नामक डिश का जो आजकल सब खाते रहते हैं?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो यार, ये कसमें खा के नहीं तो सुन के पेट तो काफी भर गया है। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स 90s के गानों के ज्ञान की तरफ, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने हैं ये है कौन से। यहाँ टेस्ट होता है आपके ज्ञान का। तो यानी कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान का। तो ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दो गाने कौन से है। Here we go।

बस जी, अब मुझे डीएम करना है और मैं इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया। लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है, और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाए।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai and inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी।
3: शाबाश। डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11।
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: स्टोर करता है।
3: शाबाश। लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन।
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
4: पीके मेनन।
3: खत्म।
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता। आदमी का नाम राजकुमार राव, रेडियो स्टेशन का मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
8: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ऐसा नहीं है कि हम 90s kids के ड्रामास नहीं देखा करते थे. हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT platforms नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने. और हमारे लिए के ड्रामास used to be एकता कपूर के सीरियल्स जो के से ही शुरू हुआ करते थे. राइट फ्रॉम क्यूकी सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट. और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtual la burga.
1: हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या? हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या आप पागल है क्या?
2: पागल आप है, पागल आप है
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। हैं किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया, फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए,
2: आज के बाद घर से गए आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
9: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
6: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen.
10: Happy, taste good. Papa John's, enjoy double delight offer.
6: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza.
11: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Alwakra, Almeshaf and Barwa City. Kim's Health, because aap deserve karte hain best care.
12: Restaurant partner Absolute Barbecue, from savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues, Sunday to Tuesday only, lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues.
13: Refreshment partner Baladna Milk Laban Yogurt, experience the fresh creamy taste that Qatar loves, refreshing every moment with every sip and spoon.
14: Partnered by Hozaras, super sale 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homezaras.qa and Daiso Japan, your one-stop back to school shop.
15: Printing and advertising partner Brand Arts, print, signage and events, your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
16: Visual media partner Rehab Media.
17: Production partner Symphony.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV ke shutter wale cabinet.
2: Yaadon ko chitthi.
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छुपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
2: इश्क

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Countdown shows में बाली ब्रह्म भट्ट का जब ये गाना आया करता था तो at that time this was just a melody for us. किसको पता था कि बड़े होते होते ये गाना जज्बात में तब्दील हो जाएगा?
0: मिर्ची 90s का सेट.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And 90s के दौर का बाली ब्रह्म भट्ट का एल्बम का ये गाना.
2: तेरे भी जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा.
1: What a melodious track, यार. लेकिन ये जो गाना आया करता था तो मुझे ये गाना इसके एस्थेटिक्स की वजह से अच्छा लगता था, इसके वीडियो की वजह से अच्छा लगता था, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, कानों में ना काफी चाशनी खोल दिया करता था. लेकिन इसके लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं गया अंटिल एंड अनलेस मैं बड़ी हुई, क्योंकि ये गाना जो है वो ये कहता है कि तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा. And that is such a heartbreaking statement for anyone to make, yeah. Seriously. I mean, some people जो न जाने कितने साल एक साथ बिता देते हैं and then there comes a situation जहां उनको ये decide करना पड़ जाता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते. मतलब वो जो रोज बातें हुआ करती थी, वो जो रोज सुबह गुड मॉर्निंग होती थी, गुड नाइट उसी की आवाज से हुआ करती थी, दिन में कुछ वक्त साथ बिताया करते थे, एक दूसरे की जिंदगी जो है वो शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, अब ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान हमारे लिए स्ट्रेंजर बन जाए, ये सबसे ज्यादा दुखदायी हो जाता है यार. खुदा ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कहर बरसे, लेकिन क्या है कि किस्मत भी कोई चीज है, किस्मत में जिसका जितना साथ लिखा होता है ना उतना ही बिता पाते हैं उसके साथ. बट स्टिल द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट इज कि यार जितना बिताया क्या पता उतना भी ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या करते, एटलीस्ट ये टाइप तो मिल गया ना जो बिता लिया है, बाकी किस्मत का लिखा और ऊपर वाले का किया, उसके कहे बिना तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता. चलो अब यहाँ पे बहुत काउंसलिंग हो गई है, टाइम फॉर दिस गाना. जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
3: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
2: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

0: महमूद, प्रीतम चक्रवर्ती, राघव चैतन्य, अरुआ के, अमिताभ भट्टाचार्य, इतने सारे लोग मिले तो ये माशूका बना। और आपके साथ जो मिलता है शाम को उसका नाम है भयंकर। प्रचंड गर्मी के बीच में अगर रेडियो सुन रहे हो तो मस्त मौला गौरव के साथ हो तुम। और मिर्ची घड़ी का टाइम 4:04
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: कभी ये सोचा है कि आप और हम जब साथ में बैठते हैं तो कितनी सारी बातें होती हैं? लेकिन हमारे कतर में जब आप साथ बैठते हैं ना तो टॉपिक कोई भी चल रहा हो, मान लीजिए आप दुनिया की पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेटस डिस्कस कर रहे हैं, मोबाइल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर दुनिया भर की किसी भी चीज में करिए, अंत में वो डिस्कशन खाने के ऊपर आ जाता है। हमारे कतर में ना लोगों को खाना बहुत प्रिय है, मतलब भोजन, पानी, खाना पीना, यही हमारा अपना मेन मकसद है। एंड इसके अलावा पैसे कमाना, वो तो हम सबका मकसद है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही डिस्कशन करते करते आप भी खाने के टेबल तक आ जाते हैं तो मस्त मौला गौरव के असली साथी आप ही है। और अब अगले 4 घंटे हमें आपका ही साथ चाहिए, तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ। बातों की दुकान लेकर आ गए हैं साहिबान मेहरबान कदरदान, लगा लो मिर्ची अपना कान और ढेर सारी बातों की दुकान हम खोल चुके हैं। एंड अगली बार कुछ खास बात लेकर आ रहे हैं कि कैसे आज आप आखिरी दिन अपना मुंह मीठा करा सकते हैं, किस चीज के लिए इंतजार कीजिए। फिलहाल तो कोई ऊंचे लंबे कद का आया, वेलकम करते हैं आनंद राज आनंद जी और रुबाई, मिलके गा दो।

0: Mirci.
1: Escava la buscava la sacabana. Burga, burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन था, उसकी शादी के फोटो बना दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो मतलब ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब नहीं।
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है। अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah.

ये इकलौता मीठा है ना जो डायरेक्ट पेड़ से गिरता है। वैसे फल तो आपने बहुत खाए लेकिन खजूर की बात ही अलग है हजूर, और इसीलिए हमारे कतर में लगभग 150,000 से भी ज्यादा बिक गया है। आज आखिरी दिन है, मैं इतना ही कहूंगा, मौका है। हमारे कतर में डेटा रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने, 11th लोकल डेट फेस्टिवल में अब तक 75,000 लोग गए और लगभग 153,000 केजीज ऑफ खजूर बिक चुका है। यस, डेट्स की अलग अलग वैरायटी यहां पर आपको मिलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो बिक्री हुई है वो यही कहा जा रहा है कि भैया सबसे ज्यादा जो बिक्री है वो है शीशी डेट की, यानी कि शीशी खजूर की। उसके अलावा खनेजी है, बरी है, खलास है एंड उसके अलावा कुछ अदर वैरायटीज। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 600 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डेट्स जो है वो अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड 600 डिफरेंट वैरायटीज। हालांकि इसमें बहुत सारी उतनी कॉमन नहीं है, उगने को तो लगभग 3,000 डेट पाम्स जो है वो उगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 200 से 400 या 600 ऐसी कह लें जो डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि जिनकी वैरायटी सबको पता है, और उसमें से भी बहुत चंद ही पूरी दुनिया में मशहूर हो पाती है। 200 से 400 कल्टीवेट होती है प्रोडक्शन के लिए एंड 10 से 15 ही टाइप की ऐसी होती है जो पूरी दुनिया में बिक रही होती है। जैसे हमारे कतर की बात कर लें तो हमने आपको ये नाम बताए हैं, मेजदूल, दगलत नूर, अजवा, बरही, मजफाती, इसके अलावा आपको हमने जो खलासी बताया, ये सब तो है। लेकिन सोचिए एक ऐसा खजूर का जो फल है वो यूं है कि बस पेड़ से गिरा, आप उठाइए और खा लीजिए, भैया सोचना ही नहीं है, और हजारों सालों की विरासत समेटे है ये डेट। ऐसे में इतना ही कहूंगा, अगली बार जब आप खजूर खरीद रहे हो हजूर, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि धरती पर एक ऐसा मीठा फल आपको मिल रहा है जिसके लिए आपको चंद पैसों में जिंदगी भर का आनंद मिलेगा। एंड सबसे खास बात यह है कि डायबिटिक पेशेंट भी इसे खाते हैं, तो अगली बार जब कोई पूछे अबे कितने खजूरों की वैरायटी जानते हो, तो आप भले ही लीजिए 4-5 का ही नाम, लेकिन बता दीजिए कि 600 से ज्यादा वैरायटी पूरी दुनिया में उगती है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट। आज लास्ट डे है, जितना खरीद सकते हो खरीद लो, शाम 4 बजे से रात 9 बजे के बीच ईस्टर्न स्क्वायर सुख वाकिफ का आखिरी दिन, 11th लोकल डे।

इनको बिजुरिया या बिजली गिराने के लिए नैनो की भी जरूरत नहीं पड़ती, इनकी जबान ही काफी है। ये जबान से बोलते बोलते कब ये आपके साथ गेम कर जाती है आपको पता भी नहीं लग पाता है। बात करो दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। सुहानी शाह वो मेंटलिस्ट जिसने वाकई में पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, एंड शी इज कमिंग फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम हमारे कतर में। एंड मैं आपको बता दूं ये मेंटलिस्ट वो कारीगर हैं, यूं कह लें वो कमाल करती हैं जिससे पहले आपने कभी नहीं देखा है। ट्रस्ट मी, आपसे कोई ये पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारे स्कूल फ्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड का नाम क्या था, लेकिन मुझे मत बताओ, अपने मन में लिख लो। आप लिख लेते हो फिर वो पब्लिक से बोलती है कि कोई गेस कर पाता है, सब कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो फिर पब्लिक में एक चिट्ठी फेंके कहती है इसे खोलो और जब ये अपने फ्रेंड का नाम ले रहा होगा तो पढ़ लेना। फिर क्या है, सामने वाला अपने फ्रेंड का नाम ले रहा होता है ANKIT और पब्लिक चिल्ला रही थी ANKIT, यानी कि इसे पता होता है। ये कैसे कर लेती है ये तो नहीं पता, पर कमाल है सुहानी शाह। यस एंड सुहानी इज कमिंग टू कतर, जिसके लिए आपको अपनी टिकट्स बुक कर लेनी है जितनी जल्दी हो सके। यस SCT स्नूनू पर ये राइट नाउ एट अर्ली बर्ड ऑफर में डिस्काउंटेड प्राइस पर चल रही है, जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो। एंड शी इज कमिंग ऑन 25th ऑफ सितंबर एट QNCC जहां पर इनका ये प्रोग्राम सेट है, वहीं हमारे सारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ खड़े हैं ताकि वो खूबसूरत शाम वो हमारे कदर को दे पाए जिसके लिए हमने बहुत टाइम तक इंतजार किया है। एंड अब कुछ अलग देखने की बारी है, हमने डांस नाच गाना सब देखा, लेकिन अब बारी उस मेंटलिस्ट को देखने की है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और स्पेशली हमारे इंडिया की तो सबसे बड़ी स्टार बन चुकी है। और ऐसे में अब आपको मौका मिल रहा है हमारी सुहानी को यहाँ कतर में देख पाने का, जितनी जल्दी हो सके टिकट्स बुक करा लो SCT स्नूनू पर, क्योंकि यहाँ पर अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। बाद में मत बोलना गौरव भाई कोई जुगाड़ है क्या, क्योंकि मैं असली जुगाड़ आपको अभी बता रहा हूँ SCT पे डिस्काउंटेड अर्ली बर्ड ऑफर का। मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट ई रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.
7: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
8: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: श्रेया घोषाल एक दो तीन गाना सुना दिया हमने। ये वो टाइम होता है जब आप करक पीजिए तो एक अलग सी फीलिंग ही आ जाती है, लगता है कि एनर्जी बूस्ट हो गई है, बैटरी जो है बॉडी की वो फिर से अप हो गई है, यही तो फायदा है। लेकिन मौसम उस बैटरी की फिर से बैंड बजाता है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: अब देखिए आज दिन का मैक्सिमम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, लेकिन इसकी रियल फीलिंग गाड़ी में तंदूर से कम नहीं थी। हाँ जी, 44 वाली फीलिंग में भी रियल फील जो है वो उससे ज्यादा ही लग रही थी। एंड दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो 44 जहां पर नीचे की तरफ 34, और बड़ी बात यह है शाम के 5 बजने को आए तो भी 42 डिग्री वाली फीलिंग बरकरार है। हालांकि मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ये हवाएं बिल्कुल हमारे काम नहीं आ रही हैं, लेकिन आपको पानी पी के सूरज चाचू को कोसना है क्योंकि 36% ह्यूमिडिटी भी इस मौसम को और खराब बना रही है। पर सूरज चाचू अपनी ब्राइटनेस थोड़ी कम करेंगे तो एटलीस्ट गाड़ी में तंदूर की जगह थोड़ा एसी तो फील होगा। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे, तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क, जाओ डेली जिम, इट्स नॉट इजी।
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है, इट इज वेरी इजी टू ट्रोल बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
5: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
4: योर स्पेशल ऑफर?
5: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है, ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
4: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
5: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
4: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

कोने में था बैठा जब मुझे वो दिखी थी, वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी, आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जम ली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, ते मैनू नी पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नू घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताओ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूं?
1: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल।
1: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: फिर लुटने चला तू, क्या गाना है। और एक बार फिर से हम सबका दिल लूटने आ चुके इमरान हाशमी आवारा फंटू से। इन सब के बीच घड़ी का टाइम बता दें, 5:04 होने को आ गए।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: चलिए जी देवी और सजनों, शाम के जब बस जाते हैं 5 तो हम आप मिलके खेलते हैं जनाब
3: पहचान कौन।
1: और पहचान कौन में एक आवाज और उसको पहचानना होता है। अमा गौरव, ये तो फलाने की आवाज है, आज की आवाज बड़ी इम्पोर्टेंट है।
4: ये सभी लोगों ने, ये तभी शुरू में फ्लैट में रहा करते थे, सभी लोगों ने बंगला खरीद लिए। हर किसी का घर परिवार अच्छे से चला है और सभी ने पैसे उस समय में बनाए।
1: और ये कह रहे हैं कि सब फ्लैट में रहते थे, सबने बंगले बना लिए। आप बताइए ये किसकी, कोई पहला जवाब भेज भी दिया। अरे भैया बड़े ही तेज हो।
4: ये सभी लोगों ने, ये तभी शुरू में फ्लैट में रहा करते थे, सभी लोगों ने बंगला खरीद लिए। हर किसी का घर परिवार अच्छे से चला है और सभी ने पैसे उस समय में बनाए।
1: यूसुफ भाई, आपके लिए दिल से तहे दिल से शुक्रिया है। आप 100% अटेंडेंस के साथ जवाब भेजते हो और दे दनादन मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग में भी आ चुके हैं लगातार। और कोई यूसुफ भाई ने खुद लिख दिया, गौरव भाई इनको कौन नहीं पहचानेगा, असली एंटरटेनर तो यही है। चलिए जी मैं यही कहूंगा कि हो सकता है इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, एक आखिरी बार सुन लीजिए और बता दीजिए। मैं गौरव, जो आवाज आप बता रहे हो वो तो फलाने की है।
4: ये सभी लोगों ने, ये तभी शुरू में फ्लैट में रहा करते थे, सभी लोगों ने बंगला खरीद लिए। हर किसी का घर परिवार अच्छे से चला है और सभी ने पैसे उस समय में बनाए।
1: और सभी ने पैसे बनाए। कौन है ये सुपरस्टार जिसकी आवाज मैंने यहाँ सुनाई है, 5000189650001896 पर अपना जवाब भेज दो। इतना ही कह सकता हूँ कि ये वाकई में एंटरटेनर नंबर वन है, बस मिर्ची से थोड़ा कम बोलते नहीं यार, मिर्ची से भी नंबर वन है। हम यही कहेंगे इन्होंने इंडस्ट्री में जो किया कोई नहीं पा सकता उतना नाम और काम। मिर्ची थॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na
1: vietva la burka. Milci, burka. Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे।
1: क्या हो गया
2: सर, मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है। मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने।
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्र फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप।
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले तो, फोन ठीक
1: तो
2: नहीं होते।
1: थोड़ी ना
2: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं गुब्बारे वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे।
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर, काम का टाइम है, आप
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, 2 लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स, है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

0: सुनिधि चौहान आँख गाना खत्म हुआ और आ गया अपना मुंह लेके आवाज लेके मस्त मौला गौरव। और इस घंटे जब हम आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करके आते हैं।
1: पहचान कौन
0: और पहचान कौन में आज की आवाज ये रही।
2: ये सभी लोगों ने तभी शुरू में फ्लैट में रहा करते थे, सभी लोगों ने बंगला खरीद लिए। हर किसी का घर परिवार अच्छे से चला है और सभी ने पैसे उस समय में बनाए।
0: तो भाई जवाब भी सुन के आइए समझ जाए कौन से स्टार हैं ये।
3: हाँ जी गौरव भाई, गुड इवनिंग। ये गोविंदा की आवाज है जी। गोविंदा, मेरा नाम दिनेश यादव बोला, गोविंदा की आवाज सर।
4: ये गोविंदा सर की आवाज है। मेरा नाम अयूब खान है।
3: हाय गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, वेल, वॉइस इज गोविंदा।
5: हे मस्त मौला गौरव, दिस इज योगेश, द एक्टर वॉइस नेम इज गोविंदा।
0: ओके
6: गोविंदा, गोविंदा,
4: गोविंदा, गुड इवनिंग गौरव। ओके साउंड नोट तो गोविंदा की का है। मेरा नाम अभिलाष।
0: ओके अभिलाष, थैंक यू।
7: हाय गौरव, ये आवाज है गोविंदा।
0: ओके
7: राज मुशेक।
8: अर्षद भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ और ये आवाज थी गोविंदा की।
9: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
0: गुड गुड, यूसुफ
9: भाई, वो आवाज है गोविंदा की। ये तो बहुत इजी है, इनको कौन नहीं पहचानेगा। ओके थैंक यू, बाय बाय।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू। वेल, इतने सारे लोगों ने जब कह दिया है तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि गलत है। दिनेश भाई बस आप हमारा नाम गलत देते हैं। अर्षद नहीं, गौरव भाई मेरा नाम है। सबका सही जवाब गोविंदा। इसके अलावा कुछ लोगों ने जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी लिख के भेज दो, खैर आपका नाम तो नहीं पता, लास्ट 3 डिजिट 582 वाले भैया एकदम सही लिखा है आपने। प्रत्युष, आपका जवाब बिल्कुल सही है गोविंदा। इसके अलावा थैंक यू ना चाहेंगे हम सुशील को, गोविंदा बिल्कुल सही जवाब है। एंड इसके अलावा ये है श्वेता, श्वेता बिल्कुल सही जवाब है गोविंदा, एकदम सही जवाब। अमन, यस श्वेता के अलावा, अमन के अलावा, ये कौन है, दिस नेम इज, अरे भैया नाम नहीं लिखते ना, गड़बड़ा जाता है, फोटो इतना बढ़िया लगाए। वेल, इसके अलावा यस ये है अरसलान भाई, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही जवाब है गोविंदा। यस गोविंदा, जिनकी वजह से हमने ना जाने अपने बच्चों ने कितनी फिल्मों में अपने आप को इतना एंटरटेन कराया इनकी फिल्में देख देख के, यार लगता है कि गोविंदा साहब के साथ अब भी ना कुछ बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया, उनको कभी दिक्कत ना हो। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट। फिलहाल हाडी संधु अपनी आवाज से करने आ गए एंटरटेन और बिजली बिजली की बात कर रहे हैं।
10: ओ चनती कुड़ी, ओ चनती कुड़ी,

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
5: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव।

जसविंदर नरूला सोनू निगम की आवाज में एकदम 99 के दौर में चले गए। आई थिंक दिस वॉज इन 1998 है। खैर चलो जी, सोल्डर पिक्चर, आई मीन सोल्जर पिक्चर का गाना है, हम उसमें सोल्डर बोलते थे। ये सोल्जर का ये गाना नहीं हो नहीं हो, जसविंदर नरूला की आवाज में क्या कमाल की एनर्जी थी। लेकिन हम कहते नहीं हो नहीं हो भैया, इनके सामने नहीं आना, नहीं तो दिमाग में क्या चल रहा है ये सबको बता देंगी। अरे सुहानी शाह की बात कर रहे हैं जो हमारे कतर में आ रही थी। मेंटलेस सुहानी शाह लाइव इन कतर, प्रेजेंटेड बाय आईपे, एंड हमारे एसोसिएट पार्टनर है डेयरी क्वीन, पापा जॉन्स, रेस्टो पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, शॉपिंग पार्टनर डाइसो जापान होम्स आर अस, हमारे रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, इसके अलावा अगर बात करें तो क्यूब इवेंट्स हमारे इवेंट पार्टनर है, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, इसके अलावा सिम्फनी प्रोडक्शन पार्टनर, ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, ये सारे के सारे लोग आ गए एक साथ ताकि सुहानी शाह हमारे कतर में पहली बार आए और अपने मेंटली शो को आपके सामने प्रस्तुत करके आपके दिमाग के एकदम से झन्ना दे, जैसे कि सलमान खान के साथ किया, आमिर खान के साथ किया, रिकी पॉन्टिंग के साथ किया, केविन पीटरसन के साथ किया, अपने क्रिकेटर्स के साथ किया, एंड सब के सब यही कहे कैसे किया कैसे किया, और ये क्या कैसे करती है जानना चाहते हो तो अपनी टिकट्स बुक करा लो। यस, क्योंकि 25 सितंबर क्यूएनसीसी में होने वाला है द मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर का फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कतर में शो, जिसके टिकट्स अभी आपको स्नोनू सिटी पर बोले तो एस सिटी पर स्नोनू पर डिस्काउंटेड बोले तो अर्ली बर्ड ऑफर में डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है। यह मौका चुके तो एक बड़ा शो देखने से चूकोगे। कतर के लिए एक अनूठा एक्सपीरियंस इंतजार कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो। फिलहाल दिलजीत दोसांझ आपके लवर बन के आए हैं और हम आपके लवर हैं। नाम ही है मस्मौला गौरव मिर्ची था।

जी एंड ऊर्जा ओएफएफ जसलीन रॉयल के आवाज में गाना आपके कानों तक किसने पहुंचाया? लेकिन हम वो पहुंचा रहे हैं जो आपकी जेब की ताकत सबको बता रहे हैं, यानी कि घर भेजने के लिए पैसों का रेट क्या चल रहा है आईपे पे। वेल बात करें तो इस वक्त एक कतरे रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26 रुपए 11 पैसे हैं। यस 26.11 INR ये रेट चल रहे हैं। श्रीलंकन रुपीज की बात करें तो एक कतरे रियाल के बदले 92.01। वहीं अगर हम पाकिस्तानी रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.20 घर भेजने के लिए पैसों का रेट क्या चल रहा है आईपे पे। वेल बात करें तो इस वक्त एक कतरे रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26 रुपए 11 पैसे हैं। यस 26.11 INR ये रेट चल रहे हैं। श्रीलंकन रुपीज की बात करें तो एक कतरे रियाल के बदले 92.01। वहीं अगर हम पाकिस्तानी रुपीज की बात करें जनाब,

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
3: मैं करूँ?
4: आप करोगे?
3: नहीं, मैं करवाता हूँ। मतलब मेरा होता है
4: सर, वो तो पता है। मेरा बस चलता है एक एक को घुसड़ मार के आती हूँ।
3: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड?
2: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai? Ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala. Lekin usse pata hai. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
8: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज़ नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
7: The Mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है, मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: ना लाल का लर्ची बांगड़ी, लेकिन यार थोड़ा सा इमोशनल बना दिया लकी अली ने। मस्त मौला गौरव। वो लकी अली जो अपने गानों से हम सबके अंदर कितना फन, कितनी अच्छी चीजें पैदा कर देते हैं, उन्होंने एक बात कही जिसको सुनकर दिल थोड़ा सा तो उदास है। 6:04 होने को आगे।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Yes, बस बोलो गौरव, आपके साथ देवी और सज्जन इतना ही कहना चाहता हूँ। लकी अली हाल में एक कॉन्सर्ट में थे, हमारे कतर में भी होकर गए, लेकिन फिलहाल की वो जिस कॉन्सर्ट में थे वहां पर वो बातें करते करते अचानक से ना बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने कह दिया कि वो हमेशा मौत के लिए तैयार रहते हैं और सफर के दौरान अपने कफन का कपड़ा अपने साथ रखते हैं। मुझे पता है मैं आप सबसे प्यार करता हूं, आप भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन हम सभी को जाना है और मैं इसके लिए तैयार बिल्कुल हूं। मैं खुद तैयार हूं और जब भी सफर करता हूं अपने साथ एहराम साथ लेकर चलता हूं जो मेरा कफन है। मैं जहां भी मरूं मुझे वहीं से जाने देना। और सारे लोग यार आंसू भरने लगे, रोने लगे, और मैं कहता हूं लकी अली साहब आप जैसे लोग लकी हैं और हम लकी हैं कि हम आपको सुन पाए, और आप देखना लंबी उम्र जियोगे, हम सब की तरफ से आपको एक एक साल की उम्र जो है और बढ़ जाए, सारे फैंस आपके अंदर एड ऑन करते जाएं। इन सब के बीच आज का सवाल लकी अली जी पे ही रहेगा। यस, और बॉलीवुड के सरप्राइज टेस्ट में आज लकी अली जी के बारे में।
2: अब शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
3: ओके सर।
0: आप बता सकते हैं लकी अली जी किस फिल्म में बतौर एज अ हीरो नजर आए थे? बहुत कठिन सवाल है मुझे पता है, बट यस, लकी अली एक फिल्म में आए थे और बकायदा एक्टिंग की थी। आपको बताना उस फिल्म का नाम क्या है, 5001896 पर आपको बताना है। और एक फिल्म की उनकी कई और फिल्में भी हैं, लेकिन लकी अली बकायदा हीरो के तौर पर इस फिल्म में आए थे। आपको बताना है वो कौन सी फिल्म थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लकी अली और उनकी फिल्म का नाम आपको बताना है। चलिए, मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है, जिनके गाने आपने सुने उनको किस फिल्म में देखा था यही आपसे पूछ रहा हूँ मैं। 89.6 मिर्ची 1, अगला गाना लकी अली जी की तरफ से मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Milci, burga.
2: Uska blood pressure check karo, blood pressure check karo. Haan, blood pressure check karo uska. Injection mat do usko. One second, one second. Mr. Manoj.
3: जी बोल रहा हूँ.
2: Mr. Manoj, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ. प्लीज यहाँ पे आ जाइए. मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी.
3: कहाँ ना सर?
2: हॉस्पिटल. प्लीज आप जल्दी आ जाइए.
3: टाइम बताएंगे कब तक आना मुझे?
2: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए. आगे ले आओ.
3: मैं दे दूंगा.
2: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बच जाएगी. इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं.
3: 4 यूनिट?
2: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज. ब्लड नहीं चाहिए इसको. आगे ले आओ. अब आगे ले आओ उसको. आगे ले आओ. ब्लड नहीं चाहिए इसको. हाँ, ब्लड नहीं
3: चाहिए
2: इसको. यूरिन की कमी हो गई है. आपका यूरिन चढ़ाना है. प्लीज जल्दी आ जाएंगे.
3: क्या चढ़ाना है?
2: यूरिन चढ़ाना है. इसका सारा यूरिन खत्म हो गया. प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे.
3: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना
2: है. मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से. असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था. ये रात को बाहर निकल गया. इसको मना भी किया था. पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो. ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया.
3: पेशाब निकल गया. मैं पेशाब
2: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
3: सर. इसका यूरिन सर मैच होता है कि मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल.
3: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है. मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास सारी डिटेल है. 1 सेकंड रुकिए. कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे.
3: जी जी.
2: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं.
3: अच्छा.
2: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है.
3: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा.
2: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार.
3: अभी तो सर लग नहीं रहा. 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
2: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए. और आप इतना वो परेशान मत होइए. आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
3: जी
2: वो हम चढ़ा देंगे आपके. आप फिक्र ना करें.
3: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है. अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा. तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. मैंने मजाक किया था.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची. It's hot.
5: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. Supply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
8: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: एस बस पोले गौरव आपके साथ है देवी और सजनो। मैंने बहुत सारे सवाल तो नहीं लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछा था कि लकी अली बतौर हीरो किस फिल्म में नजर आए थे।
1: My name is Rahul Shrivastav. The answer is Sur the Melody of Life.
2: Hello, good evening. My name is Manish and the answer is Chote Nawab.
0: छोटे नवाब हैं, ये तो सर्च करना पड़ेगा। इसमें कहीं दूर दूर तक नजर तो नहीं आ रहा लेकिन ये फिल्मी सर 1961 की है तो ऐसे में लकी अली जी की उम्र के बराबर ऑलमोस्ट ये फिल्म है पॉसिबल नहीं है। लेकिन लकी अली जी की कुछ नोटेबल फिल्म जो लोगों ने बताई है उनमें से कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। बिल्कुल सही जवाब फराज भाई, सुर ही उनकी राइट फिल्म है। इसलिए थैंकना चाहूंगा मैं श्वेता को जिन्होंने फिर से बताया सुर। ये भाई साहब ने अपना नंबर नहीं लिखा है सुर। इसके अलावा अगर बात करें अजीत ने कहा है सुर, लीला ने बताया गौरव जी लकी अली जी इस मूवी आई थी वो सुर है। दिस इज लीला। लीला जी थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक और नाम मुन्ना जी जिन्होंने लिखा है लकी अली की फिल्म का नाम है सुर। लेकिन मुझे लगता है जो लोग भी सुर कह रहे हैं उन्होंने वाकई में सर्च नहीं मारा नहीं तो सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ बोलते। फिलहाल लकी अली आपके गानों को हमने इतना चाहा है, इतना सुना है, इतना सुने कि बता नहीं सकते कितना सुने हैं। और ऐसे में एक गाना जिसने आपको, हम यंगस्टर्स को या यू कैन उस दौर के मिलेनियल्स को सब कुछ दे दिया था वो अगला गाना यहां मिर्ची पर। इट्स हॉट।

वेल इस गाने के बाद मैं लकी अली जी की कुछ फिल्मों का नाम आपके सामने लेना चाहूंगा। आपने सबने सुर बताया, मुझे याद है कांटे में मकसूद भाई का किरदार भी इन्होंने निभाया था, जहां पर ये संजू बाबा के साथ नजर आए थे। गुड लक फिल्म में तरुण चोपड़ा बने थे, रनवे में ही प्लेड खालिद, मर्डर एट तीसरी मंजिल में ये इंस्पेक्टर तेजेंद्र सिंह, त्रिकाल 1985 में आई थी, और सबसे पहली फिल्म जिसमें इन्होंने डेब्यू किया था वो था किताब 1977। ये सारी फिल्में थी लकी अली साहब की। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah.

चपा चपा चरखा चले, लेकिन इस लड़की का दिमाग इतना तेज कैसे चले। मतलब आप सोचिए कि आपके माइंड को एक खुली किताब की तरह अगर कोई लड़की पढ़ ले तो आपका क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सामने वाला हमें एग्जैक्टली तो नहीं पढ़ सकता। लेकिन भाई ये लड़की मैजिक फेयर की तरह पढ़ती है आपके दिमाग को। यस, और सच में ये कमाल करती है। टॉप मेंटलिस्ट है इंडिया की, नाम है सुहानी शाह। यस, एंड ये कार्ड्स के साथ मैजिक नहीं करती है, उससे बड़ा मैजिक आपके थॉट्स के साथ करती है। ट्रस्ट मी, माइंड रीडिंग आपको ऑब्जर्व करते हुए, ए लेवल साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, एंटरटेनमेंट, जादू, इल्यूजन सब एक साथ उतार देती है। और इसी वजह से चाहे बॉलीवुड सेलेब हो या फिर हम जैसा आम इंसान, हम सब कहते हैं कैसे किया सुहानी, तुमने कैसे किया। एंड अगर आप इनकी वीडियोस देखोगे ना तो सोशल मीडिया पर ये सब तरफ वायरल है। एंड फाइनली शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू कतार। यस, और इनके कतार के इस मेंटल शो को देखने के लिए द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतार, आपने अपनी तैयारियां कर लेनी है और जाकर टिकट्स बुक कर देनी है एस सीरीज नूनू पर। याद रखिए, प्रेजेंटेड बाय आईपे, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वींस, पापा जॉन्स, रेस्टो पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, एंड इसके अलावा ढेर सारे पार्टनर्स की एक बड़ी रेंज, जहां पर हमारे शॉपिंग पार्टनर है डाइसो जापान, होम्स आर अस, हमारे रिफ्रेशमेंट पार्टनर है बलादना, इसके अलावा क्यूब इवेंट्स, इवेंट पार्टनर रिहाब मीडिया, मीडिया पार्टनर सिम्फनी, प्रोडक्शन पार्टनर ब्रांडिंग, पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, एंड बहुत सारे और लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि सबको पता है सुहानी आएगी तो पूरे कतर पे छा जाएगी, क्योंकि मेंटली शो ऐसा है जो आपने पहले कभी देखा नहीं है। फर्स्ट टाइम हमारे लिए एक मौका है, हम मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर को पहली बार कतर में अपने सामने देख लें। टिकट्स बुक कर लो एस सिटी पर, इस वक्त आपको अली बार ऑफर मिल रहा है 89.6 मिर्ची वन पर। जब ये आएंगी तो सब कहेंगे, मम्मी कैसे कर लेती मम्मी मिर्ची चाट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: अवेयरनेस के साथ सेलिब्रिटी बन जाओ तो कैसा रहेगा, और वो भी छोटा मोटा नहीं, सीधे आप WHO के सेलिब्रिटी बन जाओगे। यस, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अनाउंस किया है ग्लोबल यूथ कंपटीशन ऑन इन्फ्लुएंजा एंड COVID-19 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। मिर्ची घड़ी में 7:06 के करीब का टाइम होने जा रहा है।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: और क्या पता इसी टाइम से आप दुनिया के बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ। आपको बनाना है एक खूबसूरत वीडियो, क्योंकि MOPH एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO लेकर आए हैं ग्लोबल यूथ कॉम्पिटिशन ऑन इन्फ्लुएंजा एंड COVID-19 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अवेयरनेस। यस, अब सीन क्या है हम आपको समझा रहे हैं, आपको बनानी है एक इनोवेटिव और क्रिएटिव वीडियो इसी थीम पर कि हाउ डू यू शील्ड योर सर्कल फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक इन्फ्लुएंजा एंड COVID-19। ये इस बार की थीम है, कैसे बचाओगे आप अपने सर्कल को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, जो इन्फ्लुएंजा COVID-19 के टाइप का होता है। मतलब आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को इन दोनों बीमारियों से कैसे बचाओगे, और इसी के बारे में वीडियो बनाना है। इन्फॉर्मेशन देते हुए, आपको एड्रेस करते हुए सब कुछ बताना है कि कैसे हेल्थ अवेयरनेस होती है, और यही वीडियो में आपको खुद भी दिखना है। फिर क्या है, अगर आप स्टूडेंट हो और आपकी एज साइकिल 20 से 35 सालों के बीच है, इनफैक्ट 18 से 35 के बीच है, तो आपके पास मौका है छा जाने का। प्रोफेशनल बन जाओ, अपने कैमरे को उठाओ, यूनिक आइडियाज लगाओ और अपनी एंट्री सबमिट कर दो September 13th, 2026 से पहले। याद रखिए, September 13th, 2026 से पहले आपको अपना वीडियो सबमिट करना है जो आप इन रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए बनाने जा रहे हो, और अप्लाई करने के लिए MOPH की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, फॉर्म भरो और वर्ल्ड स्टेज पर छा जाओ जब WHO और MOPH दोनों मिलकर आपको वीडियो लॉन्च करेंगे। तो भाई इससे एक अच्छी चीज आप ये कर रहे हो, पहले तो क्रिएटिव बन रहे हो, दुनिया में सेफ्टी की अवेयरनेस फैला रहे हो, और कहीं ना कहीं भौकाल बने जा रहे हो, और ये सारी बातें आपको कहां पता लगती है, मस्त मौल गौरव के साथ मिर्ची पर। तो बस हमारा याद रखना, क्रेडिट हमें भी चाहिए कि इन्फॉर्म बाय RJ गौरव, मिर्ची इट्स हॉट। फिलहाल के लिए कविता सेठ नीरज श्रीधर बनकर आए हैं आपके बंधु सखा 2.0 गाना लेकर।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjet bala burka. Milci, burka.
2: Milci.
3: Navid.
2: बोल रहा हूँ।
3: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: वो आपको मुझे बताना होगा।
3: तो मैं अभी बता दूँ?
2: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
3: संजना।
2: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
3: अपने हस्बैंड का।
2: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
3: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
2: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
3: भड़क भी जाते हैं।
2: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
3: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
2: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
3: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताऊं।
2: ओके चलिए।
4: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
3: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
4: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
2: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो मिर्च पे।
3: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
2: हम तो किसी का ही बनाते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकु। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

0: एक ही तो दिल है कतर, कितनी बार जीतोगे।
1: मस्त मौला गौरव
0: आपके साथ है। और जब मैं ये सब सुनता हूँ तो मुझे लगता है वाकई में यार ये तो दिल जीत लेने वाली बात है। अब देखिए, कतर में हमारे खाने पीने का कितना ख्याल रखा जाता है कि हम इधर उधर कहीं भी जाएं, कहीं भी खाएं, छोटा सा कैफेटेरिया हो या बढ़िया फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, सब में फूड सेफ्टी मेंटेन रहे। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 2026 के सेकेंड हाफ में यानी कि पिछले 3 महीनों में सबकी हेल्थ और खाने की सेफ्टी के लिए एक जबरदस्त टाइट इंस्पेक्शन ड्राइव चलाया था। और इस दौरान नंबर तो सुनिए 136,000 से भी ज्यादा, 136,000 से भी ज्यादा फूड सेफ्टी लेबोरेटरीज में MOPH के टेस्टिंग की गई। और इतने ही नहीं, कतर के पोर्ट्स पर आने वाले 29,000 से भी ज्यादा इंपोर्टेड फूड शिपमेंट्स की भी चेकिंग हुई और लोकल लेवल पर हजारों इंस्पेक्शन विजिट मारी गई कि कोई रेस्टोरेंट अनहाइजीनिक तरीके से तो खाना नहीं बना रहा है, ताकि हम तक सिर्फ ए ग्रेड क्वालिटी का खाना पहुंचे और हमारी सेहत मेंटेन रहे। और इतने नहीं, डिजिटल फ्रंट पर भी वथिक सिस्टम के जरिए ना हजारों फूड आइटम्स को अप्रूव किया गया है, ताकि स्मूथ बिजनेस के साथ साथ टॉप क्लास सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहे। और ये सब कुछ 360 डिग्री से देखते हुए MOPH के इस फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पिछला 3 महीना हमारी फूड सेफ्टी बनाए रखी, हाइजीन के साथ साथ कैसे हमें बेहतरीन क्वालिटी के फूड मिले इसका भी देखभाल किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कितनी बार दिल जीतोगे। और जब हम और आप अगली बार कहीं जाते हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि पता नहीं यहाँ का खाना कैसा होगा। याद रखिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की चौकन्नी पैनी निगाहों के आगे कोई बदमाशी खाने पीने से कर नहीं सकता। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट। चलो भैया, एक करक इसी बात पे हो जाए पकौड़ों के साथ। मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

दो लोग अगर आंख मार दे तो फिर तीसरे को बेवकूफ बना ही देते हैं, दोस्तों का यही तो काम है। लेकिन कोई है जिसको आंख मारने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपके दिमाग को घुमा देगी, दिन में तारे दिखा देगी। बात करो दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। सोचिए बंदी केविन पीटरसन, जो कि इंग्लैंड के एक क्रिकेटर थे, फॉर्मर क्रिकेटर केविन पीटरसन के साथ कैच खेल रही है, उतनी देर में उनसे सवाल पूछती है और उस सवाल के सारे जवाब उसी बॉल में लिखे होते हैं और केविन पीटरसन एकदम से झन्ना जाते हैं, कहते हैं कैसे हो सकता है। ऐसा कमाल करती है सुहानी शाह कि मतलब आपसे बातें करिए और इस बीच आपके ही जवाब को वो कहीं लिखी रहती है ऑलरेडी पहले से। इसे कहते हैं परफेक्ट माइंड रीडिंग, परफेक्ट इल्यूजनिस्ट एंड मेंटलिस्ट। सुहानी शाह हमारे कतर में पहली बार आ रही है 25 सितंबर, जिसकी टिकट्स आप अभी बुक कर सकते हो एट स्नूनू सिटी, यस एस सिटी स्नूनू पर ये आपको मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर अभी कंटिन्यू कर रहा है एंड ट्रस्ट मी एक शानदार शाम 25 सितंबर को होने वाली है। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर प्रेजेंटेड बाय आईपे, हमारे एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वींस पापा जॉन्स, हमारे रेस्टो पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ पार्टनर किम्स हेल्थ, इसके अलावा इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, इसके अलावा प्रोडक्शन पार्टनर सिंफनी, ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, ये सारे के सारे एक साथ आए हैं ताकि एक बेहतरीन शाम को हम अंजाम दे पाए। तो अपनी टिकट्स बुक करा लो क्योंकि दिमाग के ना परखच्चे जो है वो एकदम उड़ जाएंगे जब सुहानी के मेंटल शो को आप देखोगे, कहोगे भाई अलग लेवल होने वाला है। चलो जी, अगर अभी तक आपने सुहानी शाह की वीडियोस नहीं देखे, गो चेक इट आउट, यू विल कम टू नो मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये बिल्कुल कुछ अलग और खास होने जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, वीकेंड पे दोस्तों के साथ प्लान भी कर लो और उनको भी बुक करा दो। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ जाकर मैंगो फेस्टिवल का मजा मिल जाता है। मैंगो फेस्टिवल खत्म होता है उसके बाद डेट्स फेस्टिवल आ जाता है। डेट्स फेस्टिवल खत्म होता है तो उसके बाद हमारे कतर में लग जाता है कटारा का वो फ्लैगशिप इवेंट जो कि इंटरनेशनल हंटिंग एंड फैल्कन एग्जीबिशन है, साहेल इससे हम कहते हैं। इसका 10th एडिशन भी अब तैयार है, सितंबर 8 टू 12th कटारा में लगेगी इस नेशनल बर्ड की ढेर सारी एग्जीबिशन एंड हम देख पाएंगे दुनिया के कुछ बड़े हंटिंग एंड फैल्कनरी हेरिटेज एंड एडवेंचर को। ये सब कुछ कटारा में देखने को मिलेगा। इस उम्मीद में कि कटारा के इस फेस्टिवल में भी हम जाएंगे एंड आने वाले टाइम में कतर की और रौनक को एंजॉय करेंगे। मस्त मौला गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में ढेर सारी बातों की दुकान लेकर यही मिर्ची पर। तब तक के लिए आप हबीबी गुल्लक मिर्ची हरा कतीर, हरारा कतीर बोलते ना, यानी कि इट्स हॉट मिर्ची, बाय बाय।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
4: The show starts in.
5: सबसे खतरनाक चीज चेंज नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बदलाव को पहचान ना पाना। और इस वक्त बॉलीवुड बिल्कुल उसी मोड पर खड़ा है। ऑडियंस बदल चुकी है, उसकी पसंद बदल चुकी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि फिल्मों को ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा। Hello, I'm Suren Sundaram and welcome to another episode of the Mirchi Top 20, India ka sabse definitive Bollywood music countdown, jahan har hafte sirf gaano ki ranking nahi, balki Bollywood ki dhadkan bhi sunai deti hai. Shuruaat kar raha hoon with gaana number 20, which is from Dhurandhar and it's still my favorite.
6: Number 20.

एनएस के बाद एक बिल्कुल नई एंट्री। टाइटल भी क्वर्की, गाना भी क्वर्की, और जब क्वर्कीनेस की बात हो रही है तो अमित त्रिवेदी से बेहतर नाम मिलना मुश्किल है। उन्हीं का कंपोज किया हुआ, उन्हीं का गाया, कुमार भाई के लफ्जों के साथ नंबर 19 पर डेब्यूइंग राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टाइटल सॉन्ग नंबर 19।

0: Slipping down by one position, Arijit Singh ka gaya Tujhko from Cocktail 2. Lekin apni memories ki hard drive se ek aisa chapter dhoondke nikal raha hoon that is gonna take you back to your friends and time. इंडिया में एक बहुत अजीब सा ट्रेडिशन है, हम फिल्मों की टिकट्स खरीदते हैं और बिना पता चले उनसे अपनी पर्सनालिटी भी खरीद लाते हैं। कभी हेयर स्टाइल, कभी कपड़े, कभी बोलने का लहजा और कभी जीने का तरीका। एक वक्त था जब तीन दोस्त अगर गोवा जाते थे तो लोग बस पूछते थे ट्रिप अच्छा था, लेकिन फिर एक फिल्म आई, उसके बाद हर दोस्तों के ग्रुप को लगा खोआ जाना तो बनता है।
1: ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा।
0: उस फिल्म का नाम था दिल चाहता है। 25 साल पूरे हो चुके हैं इस आइकॉनिक मास्टरपीस को, और सोचो एक फिल्म ने कितनी खामोशी से पूरे देश का एटीट्यूड बदल दिया था। आमिर खान की वो स्टाइलिश दाढ़ी सलोन की रेफरेंस फोटो बन गई, फरहान अख्तर के डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा बन गई। वो सबसे बड़ी बात, उस फिल्म ने हमें सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, कभी कभी साथ बदलने का नाम भी होता है। इसलिए 25 साल बाद भी दिल चाहता है पुरानी नहीं लगती। हर जनरेशन को लगता है कि ये फिल्म तो शायद हमारे लिए बनी थी, और उसी साउंड ट्रैक से एक गाना जो आज भी उतनी ही मुस्कुराहट दे जाता है। दिल चाहता है कि मैंने बहुत सारे गाने आपको सुनाए हैं ओवर द इयर्स, ओवर द एपिसोड्स, लेकिन दिस वन इज द फन सॉन्ग। दिस इज वो लड़की है कहां, शान और कविता जी की आवाज में, माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक। टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: मैडम गुड इवनिंग
1: हाय
2: बैंक से बोल रहे हो ना हमारी नई स्कीम आई है मैडम ताजी स्कीम है बढ़िया स्कीम है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: सब्जी बेच रहे हैं या लोन के
2: पहले सब पहले सब्जी बेचता था
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो
1: हेलो
2: मैडम अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे
3: प्रीति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए अपने ऊपर पड़ जाती है यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आपका मुर्गा बन गया
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है
3: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं
1: नहीं
3: से सॉरी
1: सॉरी ना मैं सॉरी
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
7: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
6: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah

0: कुछ गाने अच्छे होने के बावजूद वैसे महसूस नहीं होते जितना हमने शायद उनसे उम्मीद लगाई होती है। वे जुनून के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि शायद बात सिर्फ कॉम्पोजिशन की थी ही नहीं। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक दुनिया है, और उस दुनिया की खामोशी, उसका दर्द, उसके किरदार और उसकी तन्हाई, ये सब मोहित सूरी ने बनाई थी। इसलिए जब मोहित और मिथुन साथ साथ आते हैं तो गाने सिर्फ साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं रहते, वो कहानी की धड़कन बन जाते हैं, और शायद मिथुन भी इस बात से वाकिफ हैं।
1: मैं खुद तो एक जरिया मानता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है मोहित सूरी एक ऐसे निर्देशक है जो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि एक धुन की जो बारीकी होती है कि उसको। कई बार मैं एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन होने के नाते, मैं एक अरेंजर भी हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत नामचीन अरेंजर रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इंस्ट्रूमेंट डालूं, मैं इसमें और कुछ करूं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी है मोहित की जो मुझे लगता है वो इसको कभी भी क्या कहते हैं भ्रष्ट होने नहीं देते। वो कहते हैं उसकी सादगी बरकरार रहे, यही हमारा शस्त्र है।
0: इसी पार्टनरशिप ने हमें आशिकी 2 दी, सैयारा दी और बहुत से यादगार लम्हे दिए। लेकिन अगर मोहित सूरी और मिथुन की दुनिया से मुझे सिर्फ एक गाना अपने साथ ले जाना हो तो मेरे लिए हर बार वो गाना होगा एक विलन का, हमदर्द, अरिजीत सिंह की आवाज में। दिस वन इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo, बुक योर्स नाउ।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवाता है और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स या एक्शन के लिए याद रखा जाता है। एंड देन एक मोहित सूरी होता है जिसके सिनेमा में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, म्यूजिक ही कहानी सुनाता है। इसलिए चाहे जहर हो, जन्नत हो, आशिकी 2 हो, एक विलन हो या फिर सैयारा हो, उन फिल्मों के गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल के अंदर चलना बंद नहीं करते। नौ गाना नंबर 5 था बंधु फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन नंबर 4 पर है आवारापन 2 का टाइटल सॉन्ग, जिस फिल्म के साथ मोहित सूरी का कोई कनेक्शन नहीं है। और शायद इसलिए जो इम्पैक्ट हम इंतजार कर रहे थे कि ये साउंड ट्रैक क्रिएट करेगा, उस इम्पैक्ट का अब तक थोड़ा इंतजार है। तो क्या है वो चीट कोड म्यूजिक और मूवीज के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन का? मोहित ने खुद उसका राज बताया।
1: सैयारा में भी ये बात बोली जाती है पिक्चर में कि हिट गाने आते हैं चले जाते हैं, 4 महीने बचेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं। जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है। तो गानों में वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ये गाना बनाओ, सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है। मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रोल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे, मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूं। तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं
0: यार, बस यही फर्क है। और शायद इसलिए आज जब आवारापन 2 आ रही है, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो खुद मोहित सूरी हैं, क्योंकि पहली आवारापन रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन सोचो ना, वक्त के साथ मोहित ने उसे एक कल्ट फिल्म बना दिया। फिर भी एक गाने ने लोगों का दिल जो है वो जीतना स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरे ही हफ्ते में 5 स्पॉट्स ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई है अमाल मलिक के इस गाने ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने एंड वर्ड्स है रश्मि विराग के। इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर ऑन नंबर 4, दिस इज ये आवारापन। नंबर 4।

0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah.

my God, Chinnari Chinnari, after so many weeks, has finally climbed to number 2. Even though ye ek remake gana hai, even though it has nothing on the original song from BB number 1 starring Salman Khan and Sushmita Sen, uske bawajood gana jo hai wo track kar raha hai audience ke saath, and that is why itne high spot par hai. But hey, is hafte ek aur baat pata chali and samajh aaya कि कभी कभी बॉलीवुड एक एक्टर को फ्लॉप डिक्लेयर करने की इतनी जल्दी में होता है कि वो भूल जाता है कि ऑडियंस ने तो उसे कब का अपना बना लिया था. कभी कभी

डूड 11 साल बाद इमरान खान अपने कमबैक फिल्म को अनाउंस कर चुके हैं एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई क्योंकि इमरान कभी सुपरस्टार थे ही नहीं लेकिन वो हर कॉलेज की कैंटीन में जरूर रहते थे।

यू माइट नॉट लाइक द फिल्म, लेकिन उनकी फिल्मों में एक ऑनेस्टी थी, एक ऑकवर्डनेस थी जो उन्हें हीरो कम और अपना दोस्त ज्यादा बना देती थी। यस, हर फिल्म नहीं चली। लेकिन शायद इन्हीं फेलियर्स ने इमरान को एक्टिंग से ही दूर कर दिया। लेकिन वक्त का भी अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जिस एक्टर ने रोमांस के साथ करियर शुरू किया था, वो 11 साल बाद फिर एक रोमांटिक फिल्म के साथ ही लौट रहा है। फिल्म का नाम है अधूरे हम अधूरे तुम, एंड देखते हैं कि इस बार कहानी क्या मोड़ लेती है। और जो रोमांस की बात निकली है, तो उस एक्टर की तरफ चलते हैं जिसने इमरान खान के डेब्यू के 2 साल बाद ही खुद डेब्यू किया था, लेकिन आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। नंबर 1 पर एक बार फिर रणवीर सिंह का गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और इसी के साथ एक और काउंटडाउन, एक और बात फिर साबित हो गई है कि हिट्स आते रहेंगे लेकिन सिर्फ वही गाने और फिल्में टिकती हैं जो दिल में अपनी एक स्पेस बना लेती हैं। नंबर वन पर लगातार डोमिनेट कर रहा है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। बट दैट इज इट फॉर द मिर्ची टॉप 20 दिस टाइम अराउंड। मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक म्यूजिक सुनते रहिए, खुश रहिए, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
2: सर मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया पर कुछ बिक नहीं रहा, मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
3: अरे बेटा सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। हेलो हेलो वेलकम। आज ना मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करूंगी जो कि संजय दत्त की कमबैक फिल्म मानी जाती है। वेल, कहते हैं कि इसी फिल्म ने संजय दत्त को ना एक और लाइफलाइन दी थी एट द बॉक्स ऑफिस। क्या इस फिल्म का नाम पता है आपको? हाँ, नाम ही तो पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं पता तो चलो मैं ही बता देती हूँ नाम। अभी भी नहीं समझ में आया। वेल, इस फिल्म का नाम ही नाम है। इस फिल्म में थी नूतन जी, कुमार गौरव, संजय दत्त, पूनम ढिल्लो, अमृता एंड परेश रावल। वेल, फिल्म का नाम नाम है और सारे रेट्रो फैंस ने आई एम श्योर इस फिल्म को देखा होगा बिकॉज ये संजय दत्त की कमबैक फिल्म थी। इस फिल्म में अगर एक और खास बात बताऊं, इनफैक्ट ये वाली बहुत ही खास बात है कि ये सलीम जावेद जोड़ी ने अलग होकर के ये फिल्म लिखी थी। जब दोनों यू नो दे पार्टेड वेज, तब ये सलीम साहब की सोलो फिल्म थी। इस फिल्म की स्क्रीन प्ले सलीम साहब ने लिखा, इस फिल्म की स्टोरी सलीम साहब ने लिखी, इस फिल्म के डायलॉग्स सलीम साहब ने लिखे थे। इस फिल्म में ना बहुत ही मज़ेदार कुछ चीज़ें हुई थी। बच्चन साहब ने एक कंडीशन रखी थी, क्या थी वो भी बताऊंगी वापस अश्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: अच्छा, गुड नाइट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah live.

फिल्म के लिए रूमर था कि शायद बच्चन साहब ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो संजय दत्त और कुमार गौरव का परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलर फिल्म नाम जिसमें थे संजय दत्त कुमार गौरव। जब ये फिल्म बनी ना तो उसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग की रिक्वेस्ट करी विद द मेकर्स ऑफ द फिल्म। वेल, रूमर ये उठा और बहुत सारी मैगजीन्स में ये लिखा गया कि शायद इसलिए क्योंकि बच्चन साहब उस समय संजय दत्त की और कुमार गौरव की परफॉर्मेंसेस देखना चाहते थे, उसे एनालाइज करना चाहते थे। वेल, अगर ऐसा ही होता तो फिर भाई उससे पहले भी जा की बाजी, एक से भले दो, ये दो फिल्में रिलीज हुई थी विच वर मेड विद ऑफ कोर्स कुमार गौरव एंड संजय दत्त, तो तब भी बच्चन साहब ये कर सकते थे ना कि इनकी प्राइवेट स्क्रीनिंग कर दो, उन्हें तो कौन ही मना करता। लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी आपको ये पूरी कहानी कम राइट बैक। मेरा नाम है श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu, बुक योर्स नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये वाली थ्योरी बिल्कुल भी नहीं चली, क्योंकि ऐसा काम तो बच्चन साहब पहले भी कर सकते थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी वेरी फेमस फिल्म जिसका नाम था नाम। इस फिल्म में थे संजय दत्त साहब, इसमें थे कुमार गौरव, नूतन जी, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह, परेश रावल, और सलीम साहब की लिखी हुई ये सोलो फिल्म थी। यानी सलीम जावेद ने जब अपनी जोड़ी अलग की तो सलीम साहब की लिखी हुई ये पहली वो फिल्म थी जिसके डायलॉग्स, जिसका स्क्रीन प्ले, जिसकी स्टोरी सब सलीम साहब ने अकेले लिखा था। सो भाई हुआ ये कि जब ये फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो अमिताभ बच्चन जी ने मेकर्स ऑफ द फिल्म से रिक्वेस्ट किया कि मुझे ना इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग देखनी है। सो पीपल थॉट कि ओहो, बच्चन साहब ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि शायद वो थोड़े इनसिक्योर्ड हैं कि यू नो संजय दत्त वापस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके एक तरीके की ये कमबैक फिल्म थी। सो ही वांट्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कुमार गौरव एंड संजय दत्त। लेकिन फिर लोगों ने ये भी कहा कि अगर ऐसा ही होता तो जान की बाजी, एक से भले दो, ये दो फिल्में भी पहले इन एक्टर्स के साथ रिलीज हो चुकी थी तो बच्चन साहब पहले भी ये रिक्वेस्ट कर सकते थे। फिर आखिर माजरा क्या था? माजरा एक्चुअली में ये था कि बच्चन साहब देखना चाहते थे कि सलीम साहब ने अकेले कैसी फिल्म बनाई है, जब वो जावेद साहब के साथ नहीं है, उनका स्टोरी कैसी है, उनका स्क्रीन प्ले कैसा है, उनके डायलॉग्स उन्होंने अकेले कैसे लिखे हैं, एंड क्या उनको पसंद आई या फिर नहीं आई। इसके पीछे भी इट्स अ लवली स्टोरी। कम राइट बैक, आई लेट यू नो। मैं हूँ श्रेया, only on Purani Jeans.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सलीम साहब समझ गए, पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, और आज नाम फिल्म की बात हो रही है। हाँ जी, संजय दत्त वाली नाम, या फिर आप कह सकते हो कुमार गौरव वाली नाम, नूतन जी वाली नाम, पूनम ढिल्लो वाली नाम, अमृता सिंह वाली नाम, ये सारे एक्टर्स इस फिल्म में थे। एंड इस फिल्म को प्राइवेटली देखने की रिक्वेस्ट करी थी अमिताभ बच्चन ने विद द मेकर्स ऑफ द फिल्म। सो एवरीबडी थॉट कि शायद वो कुमार गौरव और संजय दत्त को देखना चाहते हैं, एज इन उनका एक्टिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली यू नो इस फिल्म में देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, शायद वो इनसिक्योर्ड है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक्चुअल में बात पता है क्या थी, बच्चन साहब देखना चाहते थे कि उनके इतने पुराने दोस्त सलीम खान ने ये पिक्चर अकेले कैसे लिखी है, बिकॉज दिस वॉज द फिल्म, द फर्स्ट फिल्म जो सलीम खान ने लिखी थी जावेद साहब से अलग हो करके। ये जोड़ी जब अलग हो गई तो सलीम साहब ने नाम के डायलॉग्स लिखे थे, इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, इसकी स्टोरी लिखी थी अलग, एकदम सोलो विदाउट जावेद अख्तर। सो बच्चन साहब वॉन्टेड टू सी कि उनके दोस्त ने कैसा काम किया है अकेले, एंड उनको इतना पसंद आया कि वो उस रात इस फिल्म के सारे कास्ट एंड क्रू को डिनर पे ले गए और उनकी बहुत तारीफ की। एक नोट भी, एक हैंड रिटन नोट भी दिया टू द कास्ट एंड क्रू ऑफ दिस फिल्म नाम। लेकिन उन्होंने सलीम साहब को कुछ नहीं कहा। जब सलीम साहब को ये बात पता चली सलीम साहब समझ गए कि भाई अमिताभ बच्चन को ये फिल्म पसंद आई है। वो कहते हैं ना कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू एंड एक्चुअली नो तारीफ। आपका दोस्त समझ जाएगा कब आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। पुरानी जींस पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

इस फिल्म के बहुत सारे सीन्स सलीम खान ने अपने घर से ही उठाए थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम, जिसमें थे कुमार गौरव और संजय दत्त। तो अगर आप ये फिल्म देखो ना, आपको दिखेगा कि संजय दत्त कुछ कपड़ों पे आयरन कर रहे हैं और उनको घसीट करके ना उन्हीं कपड़ों को कुमार गौरव पहन लेते हैं और उसके बाद दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है कपड़ों को लेकर के। सो एक्चुअली में ये सीन सलीम खान ने अपने घर में देखा था जब सलमान, अरबाज और सोहेल में एग्जैक्टली इस बात पे लड़ाई होती थी कि कोई कपड़े आयरन करता था और दूसरा बंदा ना उन्हीं आयरन क्लोथ्स को पहन लेता था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। वेल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ जब राजेंद्र कुमार, जो कि इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे, नाम में पैसा लगा रहे थे, वो गए थे स्क्रिप्ट को सुनने सलीम खान के घर। आई विल लेट यू नो। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: नवीद
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू के लिए क्या करना पड़ेगा
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ।
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं।
1: ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो मिर्ची पे।
2: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है, मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकुड़ुकु। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कई बार ना आपकी जुबान को कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं होती है, बस आपकी आंखों का इशारा काफी होता है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। वेल, इसमें थे कुमार गौरव, संजय दत्त, नूतन जी, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लो एंड अदर्स। लेकिन सबसे खास बात इस फिल्म की ये थी कि इसको सलीम साहब ने इंडिपेंडेंटली लिखा था, यानी जब सलीम जावेद की जोड़ी टूटी, जब दोनों लोग अलग अलग रास्ते पे निकल गए, तब सलीम साहब की पहली सोलो फिल्म थी जो उन्होंने लिखी अकेले। यानी इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा, इस फिल्म की स्टोरी लिखी। अब कहते हैं कि सलीम साहब की ये कहानी सुनने के लिए राजेंद्र कुमार, जो कि इस फिल्म में पैसा लगाने वाले थे, ये स्क्रिप्ट सुनने के लिए उनके घर गए। तो स्क्रिप्ट में उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस, क्योंकि राजेंद्र कुमार बहुत सारे चेंजेस बताते थे, स्पेशली जब उनके बेटे कुमार गौरव हों इन द फिल्म, सो उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस बताने शुरू किए। अब सलीम साहब तो ऑलरेडी इतनी हिट फिल्में दे चुके थे, दीवार हो, शोले हो, सो मैनी ऑफ देम, तो जब उन्होंने चेंजेस बताए और सलीम साहब सामने के सोफे में एक कोने पे बैठे हुए थे, उन्होंने बस कहते राजेंद्र कुमार को देखा और राजेंद्र कुमार समझ गए कि ना ना ना ना, ये काम सलीम साहब के साथ नहीं करना है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, कोई चेंजेस नहीं भाई, जैसा आप लिखेंगे वही होगा। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल, RJ SHRUYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu, बुक योर्स नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बहुत कोशिश करी राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को ये समझाने के लिए कि इस फिल्म में मेन लीड उन्हें करना चाहिए। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। ये फिल्म जो कि संजय दत्त की कमबैक फिल्म भी मानी जाती है और उनके करियर का यू नो टर्निंग पॉइंट भी मानी जाती है। राजेंद्र कुमार जी ने ऑफ कोर्स भाई फिल्मों की बहुत समझ थी और वो इस फिल्म को बना भी रहे थे, प्रोड्यूस भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा कुमार गौरव इस फिल्म में मेन लीड में हो, एंड ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि ही न्यू कि कहीं ना कहीं कुमार गौरव का करियर, उनका फिल्मी रास्ता जो है वो थोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन कुमार गौरव ने मेन लीड लेने से साफ मना कर दिया। व्हाट वाज द रीजन? बहुत ही खूबसूरत रीजन है जो मैं आपको कुछ गानों के उस पार बताऊंगी। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
4: मैं करूँ?
5: आप करोगे?
4: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
5: सर, वो तो पता है मेरा बस चलता है, एक एक को घुसड़ मार के आती हूँ।
4: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड।
3: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्ती की जीत हुई, करियर के आगे दोस्ती चुनी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम। ये जो फिल्म थी ये कुमार गौरव के पापा यानी राजेंद्र कुमार ने बनाई थी, एज इन प्रोड्यूस करी थी। अब भाई उन्होंने ये फिल्म बनाई कुमार गौरव के लिए इसलिए थी कि वो चाहते थे कि उनके शेकिंग करियर को, उनके बेटे के लड़खड़ाते हुए बॉलीवुड करियर को थोड़ी लाइफलाइन मिले। और दैट्स व्हाई ही वांटेड कि दोनों कैरेक्टर्स में से उनका बेटा कुमार गौरव फिल्म का मेन लीड वाला रोल ले। लेकिन कुमार गौरव ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका करीबी दोस्त, उनका बेस्ट फ्रेंड संजय दत्त ये रोल करे। संजय दत्त का करियर भी उस समय काफी शेक हो रहा था। इनफैक्ट नाम उनकी कमबैक फिल्म मानी जाती है। कुमार गौरव को ये बात पता थी कि उनका दोस्त जो है वो अगर मेन लीड में आया तो उनके पास इतनी तारीफ नहीं आएगी, तारीफ जाएगी संजय दत्त के पास। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पापा को समझाया एंड इस फिल्म में सेकेंड लीड ली। ऑफकोर्स उनके काम को बहुत तारीफ मिली, लेकिन हाँ लाइमलाइट संजय दत्त ले गए थे। ऐसी दोस्ती सुनी है पुरानी जीन्स पे। मैं हूँ श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे भी हूँ, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल, आरजे SHREYA विद लव।

महेश भट्ट जी के करियर की भी ये टर्निंग पॉइंट थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम। संजय दत्त की फिल्म थी ये। इसमें थे कुमार गौरव, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह एंड परेश रावल। अच्छा, महेश भट्ट के लिए ये फिल्म इसलिए खास थी क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने फिल्में बनाई थी, एक थी अर्थ 1982 की और दूसरी थी सारांश 1984 की, और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास काम नहीं किया था। लेकिन हाँ, नाम ने इतना अच्छा काम किया कि उसके बाद महेश भट्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ गुड डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री। इस फिल्म की दो खास बातें और थी। नंबर वन, ये सलीम साहब की इंडिपेंडेंटली लिखी हुई पहली फिल्म थी। जब सलीम जावेद की जोड़ी टूटी तो सलीम साहब की ये फर्स्ट फिल्म थी जो उन्होंने एज अ सोलो राइटर लिखी थी। इस फिल्म के डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब सलीम साहब ने अकेले लिखी थी। और दूसरी, ये संजय दत्त के भी करियर का टर्निंग पॉइंट थी। ये उनकी कमबैक फिल्म थी क्योंकि इससे पहले 5 फिल्में जो उन्होंने करी थी वो सब एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म नाम की बातें चलती रहेंगी। मेरा नाम है श्रेया। इनकेस आपको मुझसे कुछ बात करनी है ऐसे 1-to-1, तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता तू क्यों लाइन में आ रहा है?
4: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूं यार, तू लाइन में आ रहा है? मैं लाइन में आ रहा हूं। तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूं यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहां पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
2: है
4: या बदतमीजी? बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा जा रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: Gully number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ नाम फिल्म की बात हो रही है. अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये मुझे लगता है कि ये रिलीज तो इस फिल्म के साथ हुआ था इन 1980s, लेकिन आज भी पंकज उदास जी का जब ये गाना सुनो ना, आपको कोई ना कोई ऐसा दोस्त या कोई ना कोई ऐसा यार, कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर याद आ जाता है जो कभी आपको कुछ लेटर्स लिखता था. एंड यू नो व्हाट, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि मूवी थिएटर्स में उस समय हंगामा होता था कि इस गाने को फिर से चलाया जाए. तो आफ्टर द मूवी नाम यूज़ टू फिनिश, इस गाने को फिर से रीरन किया जाता था. एंड स्पेशली क्योंकि उस टाइम पे ना मिडल ईस्ट से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे, तो वो इस गाने के साथ बहुत कनेक्ट कर पाते थे. एंड द सॉन्ग इज चिट्ठी आई है आई है, पंकज उदास जी का एक गाना. ओहो हो, इसको ना थोड़ा सा आंख बंद करके कोई खास हो उसको याद करते हुए जोर से सुनना. पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Nu, बुक योर्स नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राजेंद्र कुमार हमेशा अपने प्रोडक्शन में जरूर होते थे कहीं ना कहीं, लेकिन इस फिल्म में नहीं थे क्योंकि इस फिल्म में उनके सूटेबल कोई रोल ही नहीं था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। वेल, इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे राजेंद्र कुमार और उनके बेटे कुमार गौरव भी। सो राजेंद्र कुमार का ये सेट रूल था कि वो अपने प्रोडक्शन वाली फिल्मों में ना कहीं ज़रूर आते थे, लेकिन इस फिल्म में नहीं आए। बहुत कोशिश की उन्होंने कि कोई छोटा मोटा कैरेक्टर बना लें, लेकिन नहीं सूट बैठा। सो उनके बेटे कुमार गौरव ने भी कहा कि नहीं नहीं, ये फिल्म आपके बिना ही बन जाएगी। पुरानी जीन्स पे नाम फिल्म की बातें हो रही हैं, सो डोंट यू गो एनीवेयर। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
4: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय, आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स, इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
3: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी वी गॉट टू हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो पहली मुलाकात में तो घबराए होते ही हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलते हैं तो वो पहली मुलाकात ही लगती है, उतनी ही रोमांटिक लगती है, उतना ही एक्साइटमेंट होता है उनसे मिलने से पहले जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो ये गाना आज उनके लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना। एंड या, इफ यू मिस मी, यू नो वेयर टू कैच मी, फेसबुक और इंस्टा, आर जे श्रेया विद लव इज माई हैंडल। दैट्स RJSHREYA श्रेया विद लव। गुड नाइट।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।